Thank you.

0: کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: آمین۔ تنزیل الکتاب من اللہ

0: चल रही है, और वो क्या कि झूठ के पांव नहीं होते। ये झूठ की कोई हैसियत और हकीकत अल्लाह के सामने नहीं है। दुनिया में तो इंसान झूठ बोलकर दूसरों को मुतमइन कर सकता है, लेकिन वहां पर झूठ काम ना आएगा। झूठ वहां किसी हद तक फायदा दे सकता है जहां कोई शख्स असल हकीकत से बेखबर हो, लेकिन अल्लाह की जात वो तो हर चीज को जानती है। يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ, आयत नंबर 3 में वो जानता है तुम्हारी छुपी बातें भी, तुम्हारी जाहिरी बातें भी, और वो जानता है जो कुछ तुम कमाई करते हो। उसके सामने भला झूठ कैसे फायदा दे सकता है। लेकिन एक कयामत के दिन जब अल्लाह ताला के सामने जाकर अपने शिर्क की तावीलें करने लगेंगे तो अल्लाह ताला के सामने उनका झूठ कुछ भी काम न आएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो क्योंकि झूठ फजूर का साथी है, गुनाह का साथी है, और झूठ और फजूर दोनों जहन्नम में जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया गया, वो कौन सा काम है जिससे आदमी दोजख में जाएगा? आपने फरमाया, वो अमल झूठ है। शबे मेराज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को देखा कि उसकी दोनों बाछें चीर दी जाती हैं, फिर वो दुरुस्त हो जाती हैं, यानी एक दफा कट करते हैं फिर वो दोबारा बराबर हो जाती, फिर चीर दी जाती। इस तरह ये अमल उसके साथ कयामत के दिन तक होता रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने फरमाया कि ये झूठ बोलने वाला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी पूरा मोमिन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि झूठ को बिल्कुल ना छोड़ दे, यहां तक कि मजाह और मजाक में भी झूठ ना बोले, यानी संजीदगी के साथ तो दूर की बात, किसी को हंसाने के लिए और किसी को खुश करने के लिए जो आमतौर पर लोगों का वतीरा होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान की तबीयत में और खसलतें तो हो सकती हैं मगर खयानत और झूठ नहीं हो सकता। और एक और हदीस में आता है, झूठ इंसान के रिस्क को घटा देता है। अच्छा, जब रिस्क घटने लगता है ना फिर इंसान को फिक्र पड़ती, ईमान जाता है कोई बात नहीं, आखरत का नुकसान है कोई बात नहीं, रिस्क घट जाएगा, माल और दौलत कम हो जाएगा, नहीं नहीं तौबा अब नहीं बोलेंगे। फिर आप देखें ना कि प्रायोरिटी क्या है हमारी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: मैडम तवाके तवाजे क्लास ताई वठी वन्या, ये आए तवाजे क्लास।
3: कदे इए थिंदो आहे त बारन जे सिखण समझण जी सलायत महदूद लगंदी आहे।
4: अस्सलाम अलैकुम बारो,
3: मसलो तालीम न पर खुराक में जरूरी गिजा जी घटताई हुंदी आहे।
4: तवाजो छा नालो आहे?
2: मैडम तवा स्कूल है बारन जो हाल दिसी परेशान थी वयो, पढ़ाई में बिल्कुल उनन जी दिल नाए लगंदी, बार-बार फेल थिंदा आइन।
4: तवा पांजो लंच बॉक्स देखारियो, इतने कें इन ख्याल ही ना आयो। बारो अज का अस एक नव सिलसिलो शुरू कंदी, अस सीखी तो सेहतमंद खाधो कड़ो हों। अहमद
5: सुबह की पहली किरण
3: मुतवाजन गजा महंगी ना होंगी, बेहतरीन गजा बारन जो बेहतरीन मुस्तकबिल। ही पैगाम कश फाउंडेशन एंड कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफा पेश कयो वयो।
6: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
7: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
8: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
7: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
9: मां खाधो गरम करे थी वठा।
10: पुद थकल थकल पी लगे घणी, खैरियत आ?
9: तहां जो पुट सुमे ही नथो पूरी रात, मां त खीर प्यारे प्यारे थकी थी पवा।
11: मेरी थकन को भी तेरे
10: तू हाल वे मां चाहतो हाल तो।

0: हे वट एडियो शयूं खांदी कर सेहत ठीक रांदी
1: तवा खाओ
0: ना ना तू खा तू ना खांदी त मा के खाइंदम
2: तेरा ख्याल मेरी जिंदगी का सबसे
3: खीर पीअण वारी माउ जी बेहतरीन गिज़ा भाव ऐं ॿार इन्हीं जो हक आहे ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो
4: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे
5: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का
6: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघि ज़ुकाम दिल जी तकलीफ़ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़नि जो सूर बुखार ॿारनि जो देरि सां हलणु शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763
7: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

वफाकी हुकूमत एक भेरो ॿीहर पेट्रोलियम जन में इज़ाफ़ो करे छॾियो। पेट्रोल 14.92 रुपया ऐं डीज़ल 15 रुपया फी लीटर महांगो। पेट्रोलियम डिवीज़न क़ीमतुनि में इज़ाफ़े जो नोटिफिकेशन बि जारी करे छॾियो। क़ीमतुनि में इज़ाफ़े बाद पेट्रोल जी नई क़ीमत 414.78 रुपया ऐं डीज़ल 414.58 रुपया फी लीटर ताईं पहुची पिया। मिठी में मेरे महेश महलाणी जी पर्सनल असिस्टेंट समेत 19 ॼणनि खिलाफ़ केस दाखिल। सूमरा बिरादरी 20 कलाकनि खां लॻल धरणो ख़तमु। घोठ गोदियार में डॉक्टर महेश महलाणी ऐं एम पी अरबाब लुत्फुल्ला जी हामिन में झेड़े दौरान 1 दर्जा 13 ॼणा ज़ख़्मी थिया हुआ। मुतासिर दुर पारां थरकोल रोड ते फिंगारियो पुलिस चेक पोस्ट वटि धरणो हयो वियो। एम एल ए महेश मालाणी जे पर्सनल असिस्टेंट सिराज सुमरो समेत 19 ॼणनि खिलाफ़ केस दाख़िल थियण बाद गुज़िरियल ॾींहं खां लॻल धरणो ख़तमु कयो वियो। केस में एम एल ए जे पी ए सिराज सुमरो, मुश्ताक मियादाद, अज़ीज़ अल्लाह, ग़ुलाम नबी ऐं ॿिनि खे नामज़द कयो वियो।

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले ना तो परहेजगार हैं ना इंसाफ कर रहे हैं। कल रात रिजल्ट आया सीसी 2024 का, जिसमें से सिर्फ 70 लोग पास हुए हैं। हम इस रिजल्ट से सेटिस्फाइड नहीं है। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्या कह रहे हैं, जो रिजल्ट है वो ट्रांसपेरेंट नहीं बना रहे हैं। हमें ये लगता है, इरादा और नियत रखते हैं कि हम कोर्ट जाएंगे इस रिजल्ट के खिलाफ। सिविल सोसाइटी के लोगों को ये रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी आवाज का हिस्सा बने और ये जो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मुसलसल लगता है उसके खिलाफ आवाज उठाए।
1: पंहिंजा नवाज़ी ऐं मेरठ जी लितार नामंज़ूर। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जी कंडल चटाभेटी इम्तिहान में शिरकत कंदड़ उम्मीदवार नतीजनि खे तकरारी करार ॾेई छॾियो। एहतजाजी तहरीक बि शुरू करे छॾी। नतीजनि जी जल्दी जांच कराइण जो मुतालबो। उम्मीदवार नतन में प्ले कार्ड खणी एस पी एस असियापीस पारां एहतजाज जो मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। उम्मीदवारनि चयो त सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन वारा मेरठ न पैसा वारी असूल ते यकीन रखनि था। नतीजनि जी शफ़ाफ़ जांच कराई वञे ऐं सॼे मामले जी अदालती जांच कराइण जो मुतालबो कयो वियो। उम्मीदवारनि जो नतीजनि में बेज़ाबतगियुनि ऐं मेरठ जी ताड़ कई वई आहे। कंसियुनि खे संजीदगीअ सां न वरितो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में हेल्थ डिपार्टमेंट में असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर ग्रेड 16 जी लिखित टेस्ट ऐं इंटरव्यू नतीजनि ते बि ख़दशा ज़ाहिर। 44 मार्कू खणंदड़ उमेदवार खे इंटरव्यू में 85 मार्कू ॾेई पास करण बि केतिरनि ई सवालनि खे जनम ॾेई छॾियो। जन उमेदवारनि जो लिखित टेस्टूं में मार्क्स घटि हुयूं, उन्हनि खे इंटरव्यू में ॾीण ते मार्कू ॾेई पास कयो वियो। लिखित टेस्ट में वॾियूं मार्कू खणंदड़नि जो इंटरव्यू में इंतिहाई घटि मार्कू ॾिनियूं वयूं। उमेदवारनि चयो आहे त इम्तिहान में मनपसंद उमेदवारनि खे पास कराए मेरठ जो जनाज़ो कढियो वियो आहे। एस पी एस जा तकरारी नतीजा रोके मामले जी अदालती जांच कराए ख़दशा ख़तम कराया वञनि। पाकिस्तानी मेशत लाइ चङी ख़बर। IMF पाकिस्तान लाइ कढाई 2 अरब डॉलर किस्त जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। नाणे वारे वज़ीर पारां तस्दीक। ज़रियुनि मूजिबि IMF 1 अरब डॉलर IMF प्रोग्राम तहत ऐं मौसमियात जी तब्दीली जे असरनि खे मुंहुं ॾियण लाइ 20 किरोड़ डॉलर जारी करण जी मंज़ूरी ॾिनी वई आहे। IMF जे जाइज़ा मिशन पाकिस्तानी मेशत जो जाइज़ो वठण बाद कर्ज़ जारी करण जी सिफ़ारिश कई हुई। मौजूदा प्रोग्राम तहत पाकिस्तान खे मजबूती तौर ते 3.5 अरब डॉलर मिली चुका आहिनि। ناظرین تھانو بولان خان ویچو نوری آباد میں مزدہ اطالت میں ٹکر حادثے میں ایک جنو فوت ایک زخمی ریسکیو ذریعن موجب فوتی سجانہ پنجاب واسی غلام محمد ولد اللہ وسائل طور کیا ہے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر KTN نیوز
3: अहाजो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो। हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरीं इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज़।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
5: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

मली।

0: It's 11 a.m. This line check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: ईरानी पटे वजीर तर्जमान इस्माइल बाकाई चवायत तेहरान अमरीकी तजवीजन ते गौर कर रहा है नतीजे ते पहुंतासी ऐलान कर छड़ींदी ईरानी फौज समूरन सलाहतन से मुकम्मल तौर से तैयार है सूरत हाल पर नजर रखल अथसि.

ईरान आमने हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार करे वरतो। ओपन सेशन में मंजूरी वरती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट जो कौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अजीजी चाहे तो आमने हुरमज लाइ कानूनी बिल तैयार किया वो है। ईरानी पार्लियामेंट जो सरगर्मियों शुरू थी बिल मंजूर किया वो।

पेट्रोल लॻनि में गाॾी टोड़ वाद खे आवाम रद्द करे छॾियो। शहरनि जो चवणु आहे त पहिरें ई महांगाई खे मुंहुं ॾियूं पिया। हुकूमत पेट्रोल वधीक महांगो करे ज़ुल्म कयो आहे। हुकूमत पेट्रोल लॻनि में कयल वाद खे फौरी तौर ते वापसि वठे रिलीफ फराहम कयो वञे।

मलीर में बबारड़ा पानी के खर में बुरी फौत। हादसे में एक औरत हयाती विञाए पे थी। सुपर हाईवे भरसा धनी बख्श गोठ में बबारड़ा पानी के खर में बुरी फौत थी। फोतीय बारन जा लाश अस्पताल मुंतकिल सुनप नी सगी। रोड हादसे में फोतल हसीना जाल मोहरम जो मड़ अस्पताल मुंतकिल।

0: ऐं नादरीन खानपुर वेझो पैसनि जी जदी लदीअ तां अॻो ठाणो मुबैना तौर ते अगवा फैज़ू लाड़े वटां हथियारबंद ज़मीन ते ढोर चाहींदड़ नौजवान अब्दुल शकूर ओटाणो खे अगवा करे विया। वारसनि चवणाए त हथियारबंद पंज मेहू ट्रैक्टर बि कया विया आहिनि। पुलिस मूजिबि नौजवान पैसनि जी जदी तां अगवा थियो आहे।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय
4: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुन जी खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 PM ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
6: सिंध के माथे का झूमर
7: GFM 88 नेटवर्क,
6: सिंध की आवाज।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज, आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
3: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: ज़िंदगी गुज़ारियो एतमाद सां क़ुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल क़ुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

के हो तो आवाज भी सिंह की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंह की आवाज़।

अमरीका ईरान में दड़पते इस्लामाबाद में गालियों थियण जो इम्कान अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी रिपोर्ट में चवे आहे त अमरीका ईरान सालसी गलंदड़नि सां गॾिजी शुरूआती मुआहिदे ते कम करे रहियो आहे जंहिं तहत हिकु महीने ताईं गाॾियुनि लाइ फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो जंहिं जो मक़सदु जंग जो ख़ात्मो आहे। ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ़ वञी सघूं था। अमरीकी सदर ट्रंप चयो आहे त जंगबंदी बाबति असांजे तजवीज़नि ते ईरान जो जवाब अॼु मिलण जो इम्कान आहे। प्रोजेक्ट फ्रीडम सुठो ऑपरेशन आहे, करण जा ॿिया तरीक़ा बि आहिनि। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस हूंदो जंहिंमें ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं। पंहिंजो कमु करियूं पिया, कंहिंजी डेडलाइन ते को बि ध्यानु न आहे। ईरानी पटरी वज़ीर जे तर्जुमान इस्माइल बाख़ाई चयो आहे त ईरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे, नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयारु आहे, सूरत हाल ते बि नज़र रखियल अथसि। ईरान आबना हुरमज़ लाइ कानूनी बिल तयार करे वरितो, ओपन सेशन मां मंज़ूरी वरिती वेंदी। ईरानी पार्लियामेंट जे क़ौमी सलामती कमीशन सरबराह इब्राहिम अज़ीज़ी चयो आहे त आबना हुरमज़ लाइ कानूनी बिल तयार कयो वियो आहे। ईरानी पार्लियामेंट जूं सरगर्मियूं शुरू थींदे ई बिल मंज़ूर कयो वेंदो। पेट्रोलगन में गाटे टोड़ वाद खे अवाम रद्द करे छॾियो। शहरनि जो चवणु आहे त पहिरीं महांगाई खे मूरियो पिया, हुकूमत पेट्रोल वधीक महांगो करे ज़ुल्म कयो आहे। हुकूमत पेट्रोलगन में कयल वाद खे फौरी तौर ते वापसि वठे रिलीफ फराहम करे। पनो आकिल वेझो पसंदि पढ़ण लाइ घरां निकिरंदड़ नौजवान जे घर जूं चार औरतूं मुबैना तौर ते अगवा। हथियारबंद गोठ थमी खान बसमात आतुल अला जवाई क़ाइमा ऐं साहिबा महर खे अगवा करे विया। वारसन मौजिब अकबर महर ऐं ॿिनि औरतुनि खे अगवा कयो वियो आहे। कोठाण मौजिब पसंदि पढ़ण लाइ निकितल नारी जे वारसन पलान में औरतुनि खे अगवा कयो आहे। खैरपुर जो ॻोठ भाणो में ज़मीनी तकरार सां थियल झड़े में ज़ख़्मी नौजवान फौत सदाम हुसैन पुलपोटो गिम्स अस्पताल में ज़ख़्म जो सूरन सां दम धणी हवाले कयो।

0: कोट गुलाम मोहम्मद वेझो जमीन में चैन बारन की माओ जो तशद थे लाश हथ शांति नगर वासर सीटा दी बिजल कोली जो लाश घर बारा बनिया में मिलो औरत की माओ मूजब धी के कतल किया है जवाबदन के गिरफ्तार किया वे पुलिस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो इंतजार है बाकी की जांच कई पे वे बलीर में बबाड़ा पानी के खर में बुरी फोत हादसे में एक औरत हयाती विञाए वेठी सुपर हाईवे भरसा धनी बख्श गोठ में बबाड़ा पानी के खर में बुरी फोत थिया फोती बालन जा लाश अस्पताल मुंतकिल सुणप न थी सकी रोड हादसे में फोत थियल हसीना जाल मोहरम जो मड़ अस्पताल मुंतकिल किया वो खानपुर वेझो पैसन की जितिरे थी गोठानो मुबैना तौर से अगवा फैजू लाड़े वटा हथियारबंद जमीन से ढोर चाहिंदड़ नौजवान अब्दुल शुक्र ओढ़ानो के अगवा करे पाया वारसन चवण है हथियारबंद पंज मेहू ट्रैक्टर बकाए वह पुलिस मूजिब नौजवान पैसन के तिले थी अगवा थो है मेहर के सिदल मैसर पाड़ी में अगवा थे बाड़ी उजाला परवीन सोलगी के पुलिस बाजियाब कराने में नाकाम नींगरी की बाजियाबी लाइ वासन पारा घंटाघर चौक वट लगायल एहतजाजी कैंप 10 दिन बाद जारी अगवा मूजिब 26 दिन गुजरण बावजूद पुलिस नींगरी के बाजियाब ना कराए सकी नादरीन मठियारी के इलाके सिखाट भरसा कौमी शाहरा थे कार कल्टी टिनौरदम समेत पंजना जख्मी जख्मी के अस्पताल मुंतकिल किया वो मीरपुर माथुरो के फ्लोर मिल भरसा रोड हादसों पनवाकल के गोठ शेरू पुलोवासी पीरसन गुलजार अहमद फोत लाश अस्पताल मुंतकिल
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
2: जो चेहरो बेजान डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
3: हाँ हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करियो सेहत ए तंदुरुस्ती की नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंग जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे का शाम 5 वगे तई बरोज जुम्मू मोकल है एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरंड वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763
4: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hemet Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Hemet Diamond Glow Bleach Cream.
2: This program is brought to you by
3: Bangal Habib, Rishta Bharose Ka.
4: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में. डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो. सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो. अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वेंदो आहे. होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 PM तई, बरोज जुम्मू मोकल आहे. एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण. वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763.

0: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
1: Bank Al Habib. Rishta Bharose Ka.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN News.
3: 1 PM बुलेटिन.
4: हीअ मूंखे ॿुधा, गरीब जो रत पी छॾियूं, छा छॾियूं गरीबनि?
5: ख़ुदा को पुॼे, रब साईं कंदो, अलाह कंदो, लोरी पव.
6: हुकूमत खे त ख़ुदा खे मञो, अलाह खे मञो, असां खां इहे बेरोज़गारी आहे. क़ुरान खे मञो, पंहिंजे रसूल खे मञो. तेल हटायो, पेट्रोल हटायो, CNG हटायो, असांखे रोज़गार अचे.
7: राति आराम करे टैक्सी स्टाप ते पहुता आहियूं, जो 100 रुपया 16 रुपया पेट्रोल चढ़ी वियो आहे. त एॾो सदमो पहुतो आहे जो असांखे निकिरी नथा सघूं.
8: ग़रीब आवाम केॾांहुं वञे? महांगाई, बेरोज़गारी, बदहाली ऐं पेट्रोल जो चढ़णु, साइकिल वठूं या पंहिंजो पुराणे अबनि ॾाॾे जे दौर जो घोड़ा धारियूं, असां तमामु परेशान आहियूं. असां हुकूमत खे गुज़ार कयूं था, महिरबानी करे पेट्रोल जो अघु घटि कनि.
9: ग़रीब आवाम बीमारी बड़ी में जेकॾहिं हितां खां नवाब शाह ते वञनि, 4,000 खां 5,000 किरायो भरनि, उहो इलाज किथां कराए सघे? इन हिसाब जे करे त असां पाण ग़रीब आहियूं, असां हिते बीठा आहियूं, छा का सवारी कान्हे, का कुझु बि कोन्हे. को केरु आवाम अचे ई केरु कोन थो अचे. हर रोज़ कॾहिं 80 रुपया पेट्रोल चढ़ियो वञे, कॾहिं 14 रुपया, कॾहिं 70 रुपया, त पोइ ग़रीब माण्हू काॾे विझे?
4: हीउ वॾो ज़ुल्म आहे, इन खां वधीक ॿियो कहिड़ो ज़ुल्म थींदो? राति ॾींहुं मूंखे ॿुधायो, ग़रीब माण्हू लोड़े लोड़े मरी विया आहिनि. हिननि जो तेल ते वठ वठा लॻो पियो आहे. अॻे थोरो 150 थींदो हो इमरान जे बारे में, हिननि जो वठ वठा हो, हेतिरो तेल चढ़ियो आहे, हेतिरो चढ़ियो आहे.
10: पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतुनि में वाद शहरनि जूं दाहूं कढी छॾियूं. हुकुमरारनि खे पिटूं ऐं पारा था. शहरनि जो चवणु आहे त वफ़ाक़ी हुकूमत हर हफ़्ते पेट्रोल ऐं डीज़ल जा अघु वधाए जीअण जंजाल करे छॾियो आहे. फौरी तौरु अघु घटाइण जो मुतालबो. वफ़ाक़ी हुकूमत तर्फ़ां जारी कयल नोटिफिकेशन मूजिबि पेट्रोल जी फी लीटर क़ीमत 14.92 रुपया वाद खां पोइ 414.58 रुपया थी वई. डीज़ल जी फी लीटर क़ीमत 15 रुपया वाद बाद 414.78 रुपया थी वई.

आजमी मंडी में पेट्रोल सस्तो, पाकिस्तान में महांगो छो? जमायत इस्लामी के अमीर हाफिज नईम रहमान सवाल उथारे छा। हाफिज नईम है आलमी मंडी में पेट्रोल के अघन में $8 की घटताई थी है। हुकुमरान फी लीटर पेट्रोल से 150 रुपये का लेवी ए टैक्स उगाड़े रही है। हुकूमत पेट्रोल के कमाई जो जरियो बनाए छो। अवाम का गरियं लेवीज उगाड़ी पी वन। अरबे रुपये जहा जहाज प्रोटोकॉल ए बू शाही खर्चू जारी। सजो बार अवाम थे।

तरीक़नि सां पेट्रोलियम शयुनि जे क़ीमतुनि में वाधि खे रदि करे छॾियो। फौरी तौरु अघु वापसि वठण जो मुतालबो तहरीक इंसाफ़ तरफ़ां जारी कयल बयान में चयो आहे त पेट्रोलियम शयुनि जी क़ीमतुनि में वाधि हर घर जी चुल ते हमिलो आहे। नयूं क़ीमतूं उन ॻाल्हि जो सबूत आहिनि त हुकुमरान अवाम खे महांगाई जे समुंड में ॿोड़ण जो फ़ैसिलो कयो आहे। पेट्रोल जे अघनि में वाधि खां खाधे पीते जूं शयूं महांगियूं थींदियूं। ग़िज़ाई बहरान जो ख़तरो आहे। पेट्रोलियम शयुनि जे अघनि में कयल वाधि फौरी तौरु वापसि वरिती वञे।

कराची में फुरमजामत घोट की वासी नौजवान कतल भाव जख्मी सुपर हाईवे थे पंजाब बस अडे वट वाक्य पेश आयो हथियार बंद फौरन गोलियों हणी नौजवान मंसूर पुट बाजी खान के कतल करे संस भाव राशिद के जख्मी कयो वाक्य बाद जवाबदार फरार लाश जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल पुलिस जो चवण है वाक्य फुर दौरान मजामत पेश आया।

सुप्रीम कोर्ट कराची जे 20 साल पुराने कत्ल केस जो फैसलो जारी करे छोड़ो। जवाबदार जी सजा कल अदम अदालत रिमार्क्स दे चयो है त एक बेगुनाह के सजा देने बदला 10 गुनाहगार के बरी करण वधिक बेहतर है। 29 अप्रैल 2006 ते बल्दिया टाउन कराची में वाके जी FIR दाखिल कई वही हुई। बजन के कत्ल केस में गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद इकबाल के उम्र कैद की सजा बुधाई वही। सुप्रीम कोर्ट फैसले में चयो है त सिंध हाई कोर्ट में जवाबदार की सजा बरकरार रही। सरकारी फरियादी दुर इल्ज़ाम साबित न कर सकी। रूपोश रहने के बुनियाद से कंखे दोहारी करार दई नो सकजे। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट जो उम्र कैद जो बुधायल सजाओं कल अदम करार दे छोड़।

अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में बहाल थी सघनि थियूं। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल जी दावा रिपोर्ट में चयो आहे त ॿई धुरियूं टाकरे जो किरदार अदा कंदड़नि सां गॾिजी हिकु सुफ़े ते ॿधल 14 डकाती फामती यादाश्तनामो तयारु करण ते कमु करे रहियो आहिनि। एम ओ यू में हिकु महीने ते ॻाल्हियुनि जो फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो। मक़सदु जंग जे ख़ात्मे जो रस्तो आसान करणु हूंदो। एम ओ यू में ईरान जे एटमी प्रोग्राम हरमुज़ लंग में चिकताण घटाइण ऐं ईरान जे अफ़ज़ोदा यूरेनियम खे टे मुल्क खां मुंतक़िल करण जहिड़े मामलनि ते ॻाल्हियूं शामिल हूंदियूं। इम्कान आहे त अॼु ईरान तरफ़ां को जवाबु मिले। जल्द ख़बर पइजी वेंदी त ईरान ॼाणे वाणे देरि करे रहियो आहे या न। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जूं व्हाइट हाउस में मीडिया सां ॻाल्हियूं। ट्रंप ईरान खे धमकी ॾींदे चयो आहे त जेकॾहिं मामला ते न थिया त प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू कंदासीं। पाकिस्तान जी दरख़्वास्त ते प्रोजेक्ट फ्रीडम मुलतवी कयो वियो।

कंहिंजी डेडलाइन ते ध्यानु नाहियूं ॾींदा। ईरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते गौर करे रहियो आहे। हतमी नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान कंदासीं। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो अमरीका सदर ट्रंप जे बयान ते रदअमल। इस्माइल बकाई चयो आहे त दुश्मन जे जुमे रात वारी कार्रवाई आलमी कानून ऐं जंग बंदी वाइदे जी खुलियल भनेकड़ी हुई। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौरु तयारु आहे।

मलकानी शरीफ परसा नौजवान को आड़ हनी कतल वारसन जो थानो पुलिस पोस्ट खैरपुर कंबोजे हद में जवाबदार मुनवर हिस्पानी पंजवी वरन जे नौजवान शाहनवाज पुत्र भट्टो सोलंगी के कुहाड़ जा वार करे फरार थी वो नौजवान के अस्पताल नियो पे वो तो रस्ते में धमड़ी छिड़ो वारसन जो पिंगरियो जुडो रोड ते लाश रखी धरणो ट्रैफिक मौतिल जवाबदार की गिरफ्तारी तई धरणो खत्म न करण जो ऐलान पुलिस जो चवण है तो वारसन बुधायन था मामूली गाल जवाबदार नौजवान के कतल किया है वाके की जांच कई पी वे

कराची के गोठ दलीबख्श में बनीगर खल में बुढ़ी फौत फौती बारन में डह साल जो वसीम यारह साल जो जीशान पुट अमीर मोहम्मद शामिल रेस्क्यू सेल मूजिब पानी के खड़ तमीराती कम के लिए खोटी वही हुई बई नीगर बुढ़ी फौत थी।

अनि बेहरजी बासुम बाडी उचाला सोलगी छवी ये गुजरल बावजूद भाजे आप न थी सके वातन जी घंटा घर चौक ते दहे डी पे एहतजाजी कैंप जारी जमात इस्लामी सिंध जे अमीर काशिफ सईद शेख जगजती तौर शरीक न्यानी के बाजियाब करण जो मुतालबो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे चार गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
2: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
3: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
4: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियन की खारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, बारन जो देर सा हलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबह 9 AM का शाम 5 PM ताई, बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधिक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
5: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद तो मौजज़ों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। सभी समात उनके मुझे तरफा अस्सलामुअलैकुम दो के समंदर चाहतों की बारिश और खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक आज से कल तक सुबह से शाम तक दिन से रात तक नींद से जाकर जमीन से आसमान तक जिंदगी से मौत तक चाहते तारों तक से खुशी तक दिल से दिल तक जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक अल्लाह ताला आप सबको हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जनाब आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखे मोरो मीर प्रकाश मरियारी सकरन मेहरा पर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल जनाब प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ये प्रोडक्ट्स आप लोगों की खूबसूरती के लिए हैं, खूबसूरती को बढ़ाने के लिए और आप लोगों के चेहरे पर हसीन साल निखार लाने के लिए है। ओके जनाब से तैयार हो जाएंगे रेडी शेडी हो जाएंगे और हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रह जाएंगे क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि अगर ये प्रोग्राम आप हमारे साथ मौजूद है और सुन रहे हैं तो ये चीज़ें आप लोगों के लिए होती हैं कि भाई अगर आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल प्रोडक्ट करेंगे या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो इन दोनों प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल के बाद आप लोगों को रिजल्ट कैसे मिलने वाले हैं और क्या चीज़ें ऐसी हैं, क्या डिफरेंस है जो कि आप लोगों के समझने की बातें होती हैं। तो बिल्कुल जी सब कुछ समझाएंगे और आराम से समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, तहम्मुल से समझाएंगे और इसी के साथ साथ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं तमाम तो लोगों को वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है। बिल्कुल जी आपकी मोहब्बत और समात और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया। इसी के साथ साथ जरा अपना भी तारुफ करवाते हैं सो लिसनर्स प्रेजेंटिंग द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर यू आर शे एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान नाम तो सुनाई होगा। तो बिल्कुल आपकी सिद्रा आप लोगों के साथ साथ मुखातिब हो चुकी है यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं सर आपने हाल चाल बताते जाइए सो डियर लिसनर्स अंत के फहालत कैसे ही आपकी हालत उम्मीद है शदीदन की बिल्कुल ठीक ठाक होंगे सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी ना वो खत्म हो चुकी है, फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ही ली। आपको पता ना जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं तो यकीन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे, आपके चेहरे पर खूबसूरतियां लाएंगे और यहाँ पर आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ रहने वाला है ठीक अब से लेकर पूरे 3 बजे तक। ओके जी तो फन करने के लिए, बातें करने के लिए, खूबसूरती के राज जाने के लिए आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए। ओके जी तरीकेकार क्या होंगे वो आप लोगों को बताएंगे लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने कामों के दौरान हमें सुन रहे होते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रहे थे, ऐसी बहुत सारी अंटियां अम्मियाएं खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान। तो भाई अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्त से गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए। ओके जी तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 उल्की स्माइल आते हैं। यहाँ पर ऐसा करते हैं आगा से प्रोग्राम कर लेते हैं, सबसे पहले आगा से प्रोग्राम करते हैं जी प्रोग्राम व्हाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो में और यहाँ पर वापस आकर आप लोगों को बताते हैं कि आज के प्रोग्राम में क्या है और साथ साथ ये जो प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो इनके क्या फायदे हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे जब आप इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल जी मौजूद रहिए, एंजॉय करते जाइए और हमारा साथ देते रहिए पूरी 3 बजे तक आपका हमारा साथ। प्रोग्राम व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुनते रहिए और हमारा साथ दीजिए।

प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। यहाँ पर आपके सिद्धा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं शामिल प्रोग्राम होते जाएंगे, किस तरह से आप हमें ज्वाइन करेंगे बिल्कुल जी वो आप लोगों को बताएंगे। लेकिन साथ साथ आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या है जरा उसकी जानब भी आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर सेगमेंट्स होंगे और प्रोग्राम के अंदर आप लोगों से सवाल पूछा जाएगा। तो आज जो मेरा आप लोगों से सवाल होने वाला है तो वो बिल्कुल ये होने वाला है, आज जो है ना हमारे लिसनर्स जितने भी हमारे साथ मौजूद है, जितनी भी समाज हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम सुन रहे हो, शामली प्रोग्राम होना चाहते हैं, तो आज जरा आप मुझे ये बताइए हर लोगों के साथ ना स्किन अगर आपकी जो होती ना उसके साथ कोई ना कोई ऐसा मसला होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई ये कैसे दूर किया जा सकता है, या फिर आप लोगों को कई मतलब ऐसा होता है कि आप लोगों को सहूलतें नहीं होती कि भाई आप किससे मशवरा कर सके, या फिर अगर आप मशवरा करते भी हैं तो आप लोगों को ये नहीं समझ आती बात कि क्या वो अगला इंसान हमें सही जो है ना वो एडवाइस देगा या नहीं देगा। तो आज मैं आप लोगों से सवाल बिल्कुल ये पूछूंगी, आज ऐसा करते हैं कि आप लोग जो ना मुझे अपनी स्किन की जो है ना वो प्रॉब्लम्स शेयर करेंगे, आप लोगों की स्किन के साथ क्या प्रॉब्लम है वो आज आप मुझे बताएंगे और उसके साथ साथ मुनासिब सा जो है ना मैं आप लोगों को उसका हल बताऊंगी। और उसके अलावा हमारे पास जो इतने सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं जिनमें आप लोगों के लिए डी स्किन के प्रोडक्ट्स हैं और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के प्रोडक्ट्स हैं, तो इनमें आप लोगों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो कि आप इस्तेमाल करके अपनी ना खूबसूरती को बढ़ा सकते हैं और अपनी खूबसूरती में चार चांद लगा सकते हैं, तो ये बात ही आज के प्रोग्राम में हम करेंगे आप लोगों के साथ साथ। आप लोगों के मैसेजेस होंगे, आप लोगों के कॉमेंट्स होंगे और आप लोगों की कॉल्स भी होंगी। तो बिल्कुल जी अगर आप हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा रोजाना या फिर आप घूमने वाले लिसनर्स हैं तो क्या करेंगे, अपना सेल फोन उठाएंगे जनाब, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाएंगे, टाइप करेंगे LR की, सिंगल स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, पूरा मैसेज लिखेंगे और उसे सेंड कर देंगे 8881 पर। उसके अलावा अगर आप हमें फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप हमें इजीली सुन सकते हैं, हमारा पेज जनाब जी लाड़काना FM 88.8 का, और जी FM 88.8 के पेज के ऊपर जब आप आते हैं तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट कर देंगे और शेयर कर देंगे, ठीक हो गया जी। और उसके साथ साथ अगर आप हमारे साथ कॉल करना चाहते हैं प्रोग्राम में, कॉलिंग के जरिए शामिल रहना चाहते हैं, तो कॉलिंग आप लोगों का जो कॉलिंग वाला सेगमेंट है वो 2 बजे के बाद स्टार्ट किया जाएगा, तो कॉलिंग नंबर क्या होगा वो भी 2 बजे के बाद ही बताया जाएगा। फिलहाल आप हमें मैसेज कीजिए और कमेंट करते रहिए, साथ साथ बाकी जो लोग हमें फेसबुक पर सुन रहे हैं, फेसबुक पर मौजूद रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, तो फेसबुक की पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते जाइए, ठीक हो गया जी। पोस्ट को लाइक और शेयर कीजिए, ऐसे ये होता है कि भाई हम बहुत ज्यादा लोगों को बता पाते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट्स हैं उनसे आप लोगों को कैसा फायदा मिलने वाला है। तो बिल्कुल अगर आप भी इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो आप लोगों की खूबसूरती के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। तो इसी के साथ साथ हम जरा आप लोगों को ये भी बताते चले कि व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जनाब। तो व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए सबसे पहले व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम मौजूद है, उसके बाद व्हाइट एश का जो है ना आप लोगों के पास विटामिन सी का फेस वॉश मौजूद है, और उसके अलावा व्हाइट एश का ना आप लोगों के लिए ब्यूटी सो भी मौजूद है, और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए व्हाइट एश की लवली अल्ट्रा विटामिन की क्रीम भी मौजूद है जो कि भाई आप लोगों की स्किन के लिए परफेक्ट वाला निखार साबित होने वाली है। उसके अलावा व्हाइट एज के हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं जो कि 3 मुख्तलिफ फ्लेवर्स में आप लोगों को मिल रहे हैं। उसके अलावा व्हाइट एज का स्मूथ स्किन वाला जो है ना वो लोशन भी मौजूद है जो कि आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं जिनकी स्किन ड्राई होती है काफी ज्यादा, लेकिन ये तो खैर सर्दियों वाला प्रोडक्ट है, लेकिन अगर गर्मियों के प्रोडक्ट की बात की जाए तो इस लोशन को छोड़कर बाकी आप सारे प्रोडक्ट्स बसानी गर्मियों में भी लगा सकते हैं। और इसके साथ साथ डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है, ये जनाब सीरम के साथ साथ तैयार होता है, आप लोगों की स्किन को जो है ना वो डीपली मॉइस्चराइज करेगा, आप लोगों की स्किन को डीपली खूबसूरत बनाएगा, और डी स्किन के साथ साथ आप डी स्किन का फेस वॉश भी लगाते हैं। और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट जो है ना ये जनाब विटामिन ई बीड से तैयार होता है माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ जो कि आप लोगों को 2 दिन के अंदर परफेक्ट वाले निखार देने वाले हैं। तो इतने शानदार क्वालिटी के ये प्रोडक्ट्स भाई आप लोगों के लिए मार्केट में अवेलेबल हैं, तो बस आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर जाइए, वहां से मालूमात लीजिए और परचेज कीजिए। और इसी के साथ साथ अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल होने चाहिए और हम वहां से जाकर परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए नंबर भी मौजूद है, नंबर के ऊपर रابطہ करेंगे तो नंबर है जनाब 03-1579-0595, ये नंबर डायल कीजिए और अपने किसी भी करीबी जनरल स्टोर पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आप इजीली अवेलेबल करा सकते हैं।
तो बिल्कुल जी अवेलेबल कराते जाइए, खूबसूरती को बढ़ाते जाइए और साथ साथ हमें बताते जाइए अपनी स्किन के प्रॉब्लम्स के बारे में, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना बड़े परेशान होते हैं कि हमारी स्किन के साथ ये मसला हो चुका है और हमारी स्किन जो है ना खराब हो चुकी है, हमारे चेहरे पर जो है ना एक्ने का बहुत ज्यादा मसला है या फिर हमारी स्किन काफी ज्यादा अजीब टाइप की है, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है कि आप अपनी स्किन टोन को भी समझ नहीं पाते। तो आज आप जरा अपने स्किन के मसाइल मेरे साथ शेयर करेंगे और हो सकता है कि उन मसाइल में से थोड़ी बहुत से ऐसे टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं जो कि आप लोगों के स्किन के लिए फायदेमंद साबित हो। ओके जी, तो बिल्कुल ये प्रोग्राम आप लोगों का अपना है, अगर आप नहीं होगी तो मजा कैसे आएगा। तो बिल्कुल जी शामिल प्रोग्राम होते जाइए और मुझे बताइए कि आप ये हमारे साथ मौजूद हैं और कहां से आप हमें सुन रहे हैं ये भी बताते जाइए। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हमारे साथ नूर सिंतनियो भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाड़काना से, आप हमारे शो की तारीफ करें, बहुत शुक्रिया जी। नजीर खोस हमें सुन रहे हैं बलोचिस्तान सांस, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा हेंची वफा मीर मुनव्वर अली भाई, वफा मीर मुनव्वर भाई आपको वेलकम करते हैं। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी। हिदायतुल्लाह अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रजाक हमें सुन रहे हैं, वेलकम जी। इकबाल लाशारी हमारे साथ प्रोग्राम में कनेक्टेड हैं, वेलकम जी। और उसके अलावा हमारे साथ ही जनाब यहाँ पर फहद देरी, सऊद देरी, नवाब शाह कहते हैं सलाम अदी शो, तुम्हारा जो नाई साहेब प्लीज प्ले हो मेरा चना। ओके जी, मैं फुल कोशिश करूंगी आपको हमेरा चना सुनवाएंगे। किशोर भाई आ चुके हैं, मैं तो ये बात है, वैसे वीडियो बड़ी अच्छी बनाई है इन्होंने, तो हाँ अच्छा एंटरटेनमेंट हो जाता होगा आप लोगों का। चलिए जी, इसी के साथ साथ ना आप लोग हमारे साथ मौजूद रहते जाइए, ज्वाइन करते जाइए और मुझे बताइए आपकी स्किन के साथ कौन सा ऐसा मसला है जिसे आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए, और साथ साथ प्रोग्राम में आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए और कॉल भी करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पर टाइम हो जाता है, जरा हम शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आएंगे। तो आपने कहीं नहीं जाना, मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। 88 नेटवर्क आप सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

विटामिन्स और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज। अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

चुके हैं दोबारा आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है यहाँ पर सखर मोरू मीरपुर खास मटियारी सकर मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी शो। बिल्कुल सही, यहाँ पर बातें होती हैं व्हाइट एश एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट जो है ना आप लोगों के खूबसूरती के लिए, आप लोगों के खूबसूरती को मेंटेन करते हैं और आप लोगों के चेहरे को हसीन से भी ज्यादा हसीन बना देते हैं। तो अगर आप ही अपनी स्किन को लेकर परेशानी, अगर आप ही चाहते हैं कि भाई आपकी खूबसूरती जो है वो बढ़नी चाहिए और आप लोग हमेशा अपनी खूबसूरती का ख्याल रखने वाले इंसान हैं, तो भले ये बहुत अच्छी बात है, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखना चाहिए। उसके अलावा भाई कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि आप लगाएं तो आप लोगों की खूबसूरती बढ़ती जाए, तो बिल्कुल जी आप लोगों के लिए हम लेकर हाजिर खिदमत हो चुके हैं। हाँ जी जनाब, व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ने आप लोगों को बताया कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स शामिल है, उसके अलावा जरा हम तफसीलन आप लोगों को बताएंगे। अगर आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम की जानेब आते हैं। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम के इस्तेमाल के बाद आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जब आप दो रातें इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों को परफेक्ट वाले निखार मिल जाते हैं, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है इसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है। पाकिस्तान में कुछ गिने चुने प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनके अंदर जो है ना विटामिन ई बीड्स मौजूद है, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप लोगों की स्किन और ज्यादा अट्रैक्टिव, और ज्यादा खूबसूरत, और ज्यादा ग्लोइंग बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर विटामिन ई बीड्स शामिल है एंड माइक्रो बीड्स फार्मुलेशन के साथ साथ तैयारशुदा होने वाला ये प्रोडक्ट है। और इसके अलावा आप लोगों की ऑल स्किन टाइप के लिए सिर्फ दो दिनों में वाजे नतायज के लिए डी स्किन वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे जदीद अज्जा के लिए, जैसे कि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीजें ऐड की गई है, ग्लूटाथायोन से भरपूर है ये क्रीम, रात भर काम करती है ताकि आपकी जल्द को चमकदार बनाए, डार्क स्पॉट्स हो या फिर आपके चेहरे पर जितने भी मसाइल हो वो सारे खत्म हो जाते हैं, आपकी स्किन के अंदर तक जाकर, गहराई तक जाकर आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करके चमकदार बनाती है, जल्द की साख्त बेहतर करे और नरम हमवार और खूबसूरती जल्द आपकी जो है ना वो बन जाती है, क्योंकि ये डर्माटोलॉजिस्ट की तजवीज से तैयार शुदा होने वाला प्रोडक्ट है। इसके अंदर जो है ना इस तरह की कोई भी चीज ऐड नहीं की गई है, क्योंकि आपकी स्किन को जरा सा भी नुकसान पहुंचाने वाला प्रोडक्ट होगा। इसे आप हर स्किन टोन वाला इस्तेमाल लगा सकता है, इस्तेमाल करेंगे जी अगर आपकी स्किन कितनी सेंसिटिव हो, दो रातों के इस्तेमाल से आपको मिलेगा परफेक्ट वाला हुस्न, तो दो रातें इस्तेमाल कीजिए। लेकिन इस्तेमाल करने से पहले ये बात भी याद रखें कि आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ डी स्किन का फेस वॉश भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि जब आप कोई भी क्रीम लगाए ना तो उसी कंपनी का जो है ना वो फेस वॉश लाजमी साथ में लगाया करें। तो अगर डी स्किन ब्यूटी क्रीम लगाना चाहते हैं तो उसके साथ आप डी स्किन का जो है ना वो फेस वॉश इस्तेमाल कीजिए। रात के टाइम सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, उसके बाद जो है ना आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर दीजिए। दो रातों के इस्तेमाल के बाद आपको मिलता है खूबसूरत सा निखार, आपकी खूबसूरती जो है ना वो बढ़ती जाएगी और आप लोगों को जो है ना वो पता चलेगा कि आप वाकई कितना अच्छा प्रोडक्ट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के बारे में, तो व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द को फ्रेश और गोरा बनाती है, हर किस्म के नुकसानदार असरा से पाक है और आपके चेहरे पर झुरियाँ हो, दाग धब्बे हो, ये सारी चीजें खत्म हो जाती है, क्योंकि व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम जो है एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है। तो ये भी बहुत ही अच्छा वाला प्रोडक्ट है। अगर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा झुरियाँ आ चुकी हैं या फिर आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा रिंकल्स हैं, आपकी स्किन डल सी हो चुकी है, तो व्हाइट एश लगाएं और व्हाइट व्हाइट हो जाए। उसके साथ साथ व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम के साथ आपको जो है ना व्हाइट एश का ब्यूटी सो भी मिल रहा है और व्हाइट एश वालों का विटामिन सी का फेस वॉश भी मिल रहा है। अब चॉइस आप लोगों की होने वाली है कि आप क्या इस्तेमाल करेंगे। अगर आप सोप लगाने वाले लोग हैं तो आप जाहिर सी बातें सोप लगाएंगे, अगर आप फेस वॉश लगाने वाले इंसान है तो जाहिर सी बात है आप फेस वॉश लगाएंगे, ठीक है। ये भी आप लोगों के पास ऑप्शन मौजूद है। और इसी के साथ साथ हम जरा बात करेंगे व्हाइट एज की लवली क्रीम के बारे में। भाई ये तो मेरा पसंदीदा प्रोडक्ट बन चुका है, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आप जो है ना हर स्किन के साथ साथ जो है ना दिन में लगाने वाला प्रोडक्ट है और हर उम्र का इंसान इसे इस्तेमाल कर सकता है, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, छोटे हैं बड़े हैं, तो हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि व्हाइट एश लवली क्रीम जो है ये विटामिन से भरपूर है। इसके अंदर विटामिन B3 मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है और विटामिन ई मौजूद है। उसके साथ साथ बहुत सारे विटामिन का ये जो मिक्सचर है ये तैयार किया गया है और व्हाइट एश लवली क्रीम आप लोगों की खूबसूरती को इन्हेंस करती है। और अगर आप चाहते हैं कि भाई इसे आप दिन में लगाएंगे तो बिल्कुल लगाइएगा,
दिन में लगाइएगा, रात में लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर जो है सनस्क्रीन भी एड की गई है, जो कि अगर आप दिन में लगाएंगे तो आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। अगर आप कॉलेज गर्ल हैं, अगर आप स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो आपने व्हाइट एज की लवली क्रीम का इस्तेमाल तो लाजमी करना है। अगर आप लड़के हैं, लड़कियां हैं, सब कोई इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल अपनी खूबसूरती को चमकता हुआ देखिए और व्हाइट एज की लवली क्रीम लगाइए जो कि सनस्क्रीन के साथ तैयार शुदा है। और ये भी बात है कि इसके अंदर जो है ना 30 विटामिंस के कैप्सूल ऐड किए गए हैं, तो हर तरह से जो आप लोगों की स्किन के लिए परफेक्ट वाला प्रोडक्ट साबित होने वाला है। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम ऐसा समझ लें कि आप लोगों की स्किन के लिए गेम चेंजर वाला काम करेगी। तो व्हाइट एज की लवली क्रीम आप इस्तेमाल करें। वो लोग जो चाहते हैं भाई हमारी स्किन पर कोई लाइट सा फार्मूला होना चाहिए, लाइट वेटेड कोई आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं, व्हाइट एज की लवली क्रीम आप लोगों के लिए परफेक्ट है। जरूर लगाइएगा। और इसी के साथ साथ जो है ना, दिन में लगाएंगे, सुबह के टाइम, रात के टाइम, जब भी आपका दिल करे। और साथ साथ जो है ना, ये इतनी मस्त क्रीम है ना कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। इनफैक्ट मैं खुद ही भी इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छे जो है ना वो रिजल्ट्स मिल रहे हैं और बहुत अच्छी वाली वाइब भी आ रही है। क्योंकि कहते हैं ना, जब स्किन तवाजी खुश होंदी आए तो तवां पाण ही खुश थी वेंदा आहियो। सो स्किन खे बिल्कुल खुश रखो, ऐं तव्हां पाण बि खुश खुश रहो। उन सां गॾोगॾु मां खां बिल्कुल अॼु इहो सवाल पुछियो आहे, इनफैक्ट इहो जो टॉपिक रखियो आहे, त तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधायो पंहिंजी स्किन जे बारे में, तव्हांजी स्किन जा कहिड़ा मसला आहिनि जेके तव्हांखे परेशान कनि पिया, ऐं उहे कहिड़ियूं ॻाल्हियूं आहिनि जेके तव्हां सोचो था त अगरि हीअ चीज़ मुंहिंजी स्किन ते न हुजे आहे त शायदि मां ख़ुशि हुजां पंहिंजे ज़िंदगी में। ओके, तो जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते जाइए और मुझे बताइए कि आप भी हमारे साथ मौजूद हैं और कहां कहां से आप हमें सुन रहे हैं, बताइए ना, पता तो चले। और इसी के साथ साथ यहां पर आप हमें जो है ना वो शामिली प्रोग्राम हो रहे हैं, आप ज्वाइन करते जा रहे हैं तो शामिली प्रोग्राम आपको किया जाएगा। गाने भी हमारे पास मौजूद है तो हम गाने भी सुनेंगे। और इसी के साथ साथ आप क्या कह रहे हैं, आपके मैसेजेस की जाने भी आते हैं, तो फेसबुक वाले लोगों पोस्ट को लाइक और शेयर तो करो, दोस्तों को मेंशन करो, उस दोस्त को जो कि हमेशा अपनी खूबसूरती को लेकर जो है ना वो थोड़ा सा टेंस रहता है, मेरे चेहरे पर ये प्रॉब्लम है, अब इसे कैसे दूर किया जाए, तो उसे जरा मेंशन कीजिए हमारी पोस्ट पर, ताकि हम उसे बता पाए कि भाई आपकी खूबसूरती जो है ना अब सिर्फ बढ़ती जाएगी, क्योंकि अब मार्केट में व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, तो लगाइए और खूबसूरत हो जाइए।

क्या बात है, बड़ा अच्छा गाना एंजॉय कर रहे हो, इसके साथ साथ यहाँ पर अकेले अकेले गाना सुन रहे थे। ओके जी, आप लोगों के लिए लगाया है और उसके साथ साथ यहाँ पर आप लोगों के साथ बातें की जाएगी और जरा आप लोगों के मैसेजेस की जाने बातें क्या की रही है देखिए तो जरा। ओके जी, सो अब्दुल रजाक भाई हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रजाक भाई आपको वेलकम करते हैं और साथ साथ दर्दी दिल भी हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम स्वीटी। अली अकबर बरोही भाई हमें सुन रहे हैं सकरण से, वेलकम जी, खुश आमदीद। और नूर हसन तुनू भाई आपने गाने की फरमाइश कर दी, ओके जी ओके। और उसके अलावा टॉपिक के ऊपर कहते हैं कि मेरी स्किन ऑल टाइप है, ऑल टाइप स्किन मतलब समझाइए जरा। और अब्दुल रजाक कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम बेहतरीन आ है, बिल्कुल जी बिल्कुल जी, मानो लगान पयाओ बिल्कुल ये चवन पया। वफा मीर मुनव्वर अली हमारे साथ मौजूद है, हेलो। अच्छा ये हमारे साथ ही हिदायतुल्लाह कहते हैं रिश्तेदार। अच्छा ये भी वाकई बड़ा मसला है हमारी जिंदगी के अंदर और कहते हैं। अच्छा फरमाइशें ठीक है जी, फरमाइशें थोड़ी वैसे कम किया करें, आपको पता है ना स्पॉन्सर्ड शो में आप लोगों की फरमाइशें थोड़ी सी इग्नोर की जाती हैं। किशोर भाई कहते हैं कि आ अदा सच्ची बुधा तू लगाई तो, यस माँ सच्ची में लगाई दिया है वाइट ऐसी लवली क्रीम, अला सच्ची बुधाएं ॾाढी कमाल जी प्रोडक्ट आए। अगर तव्हां थोड़ी ब्यूटी क्रीम तव्हां न लॻाईंदा न, तव्हां सोचो था त भई ब्यूटी क्रीम जेका आहे असां गर्मी में न लॻाईंदासीं, त तव्हां गर्मी जे मौसम में वाइट ऐस लवली क्रीम लॻायो। वाइट ऐस जी लवली क्रीम जेका आहे न, इहा न सिर्फ़ तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी, छो त हिन जे अंदरि सनस्क्रीन बि मौजूदु आहे, बल्कि तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बि बणाईंदी, ख़ूबसूरत बि बणाईंदी, ऐं तव्हां पंहिंजी स्किन ते ॾिसंदा त वाक़ई केॾो फ़र्क़ु आहे। सो वाइट ऐस जी लवली क्रीम त तव्हां लाज़मी लॻाइजो, उहे माण्हू जेके ब्यूटी क्रीम खां थोरो अवॉइड कंदा आहिनि। ओके जी, दर्दे दिल कहती हैं कि टॉपिक चंदा कॉल पे बताऊंगी, चले हाँ ठीक है ये अच्छी बात है, कॉल पर बताइएगा। और उसके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जी पैनल की जाने बातें हैं, तो वालेकुम अस्सलाम। मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर, यहाँ आपका शो माशाल्लाह है और इंशाल्लाह क्रीम खरीद करूंगा। सॉन्ग फायज अली का सुनाइएगा, ठीक है जी ठीक है। वैसे कौन सी क्रीम आप खरीदेंगे ये जरूर मुझे बताया करें, ठीक है। और ये मोरो से हमारे साथ फिरदौस मौजूद, कहती है सलाम एस एम, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी है? मैं बहुत अच्छी, आपकी आवाज थकती नहीं क्या? शो खत्म होने के बाद भी अगले शो आने तक मेरे दिमाग में घूमती रहती है, अब तो एडिक्शन लग गई है। बाजी आप मुझे ये वाला सॉन्ग सुना दीजिएगा, और ये गाना स्पेशली आपको डेडिकेट है। अच्छा मेरी जान, मैं कोशिश करूंगी कि ये बिल्कुल गाना आपको सुनाएंगे, और बहुत शुक्रिया आपका।

0: हांजी तव्हां बि ॾिसंदा जॾहिं तव्हां इस्तेमालु कंदा वाइट एज जी लवली क्रीम.
1: इश्क मुश्क होता है ऐसा आग और पानी जैसा, इश्क मुश्क होता है ऐसा.
0: सो बिल्कुल वाइट एज जी लवली क्रीम हुजे या वरी वाइट एज जो साबुण हुजे या वरी फेस वॉश हुजे, तव्हां इहे चीज़ूं जेके आहिनि इहे अहिड़ियूं चीज़ूं आहिनि जेके तव्हां लॻाए सघो था बाबा दिलि खोले करे. छो त ही हर स्किन टाइप जे लाइ हूंदियूं आहिनि, ऐं साबुण त हर कोई इस्तेमालु कंदो आहे, फेस वॉश बि हर कोई इस्तेमालु कंदो आहे. अॼुकल्ह जेको आहे न तव्हांखे हिकिड़ी फेयरनेस क्रीम जी बि ज़रूरत हूंदी आहे, छो त गर्मियुनि जो मौसम अची वियो त फेयरनेस क्रीम जे तौर ते तव्हां वाइट एज जी लवली क्रीम खे इस्तेमालु करे सघो था. तव्हांजी स्किन खे प्रोटेक्ट कंदी ऐं तव्हांजी स्किन खे ग्लोइंग बि बणाईंदी. सही आहे, सम्झी विया न? ओके चाचा खालिद भी हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ चाचा, आप बताएं कैसे हो जी? बिल्कुल आप हमारा शो सुन रहे हैं और कहते हैं अच्छा ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ? अच्छा जेबुल निसा हमारे साथ मौजूद है. हाय आप ही सिद्रा. हेलो जेबुल निसा और चाचा खालिद, बिल्कुल आपको वेलकम करते हैं. वफा अब्दुल गफ्फार खास के लिए है फ्रॉम न्यू जतोई, आपका आवाज बहुत प्यारा है, मैं आपका शो डेली सुनता हूँ. बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, आपका वेलकम. इरम हमारे साथ मौजूद है. इरम आपका भी बहुत शुक्रिया. आकाश ओड हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम मीरपुर खास, कहते हैं शुगर मील योर शो इज नाइस बाजी, मेरी स्किन ऑयली ऑयली रहती है, क्यों इसका हल तो बताएं जरा और प्लीज प्ले आतिफ असलम सॉन्ग. ओके जी, ऑयली स्किन का तो बस एक ही हल है कि आप जो है ना अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं वाइट एज की डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब, डॉक्टर पिंपल के नाम से अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर से परचेज करेंगे ना तो ये एक ऐसा ट्यूब है जिसके इस्तेमाल के बाद अगर आपकी स्किन ऑयली भी है ना तो आपके चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो जाता है. और जिनकी स्किन ऑयली होती है ना उनके साथ ये बड़ा मसला होता है कि उनके चेहरे पर एक्नीज काफी ज्यादा आते हैं. तो अगर आपकी स्किन भी वाकई ऑयली है तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारे चेहरे पर ऑयल कंट्रोल हो तो आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल करके अपने चेहरे के ऑयल को कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि ये आयुर्वेदिक फार्मूला है. और अगर आप भी चाहते हैं कि भाई सबसे पहले जो चीज खत्म करने वाली होती है स्किन से वो ऑयल होता है, तो ऑयल को खत्म करना चाहते हैं गर्मियों में तो वैसे ये बहुत ज्यादा मसला बढ़ जाता है, तो ऑयल को खत्म करने के लिए आप डॉक्टर पिंपल वाला ट्यूब इस्तेमाल कर सकते हैं. ये भी ऑल स्किन टाइप के लिए है, आयुर्वेदिक है, तो आप इजीली लगा सकते हैं. यानी कि ये नहीं कि इसके अंदर पता नहीं क्या ऐड किया गया होगा, पता नहीं किस तरह के प्रोडक्ट से ये तैयार शुदा होगा, तो आप इजीली लगा सकते हैं. इसके अंदर सारी चीजें ऐसी डाली गई हैं कि आपकी स्किन को फायदा ही पहुंचाएंगे. और उसके साथ साथ लुबना हमारे साथ मौजूद है. वालेकुम अस्सलाम. मेरे साथ मौजूद है अर्जी भुट्टो सी, हमारा शो सुन रही है. क्या बात है लुबी, आपको वेलकम करते
1: हैं.
0: हाय हाय

ओके जी, फहद दे रही है, सऊद दे रही है, नवाब शाह से हमारा शो सुन रहे हैं, अदी बिल्कुल ठीक ठाक है, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया। और उसके अलावा ये मौजूद हैं, क्या हाल है आपके जी? मैं ठीक हूँ, वालेकुम अस्सलाम। सिकंदर अली जरवारी, अरसलान अली अच्छा जावरी है, ठीक है, कामरान अली जावरी है, रिजवान अली जावरी है, नेमतुल्ला जावरी, समीर अहमद जावरी, तनवीर अहमद जावरी, जमील अहमद जावरी, गोट रोशन अली जावरी, अली आबासी हमारे साथ साथ मौजूद है और आपको वेलकम करते हैं। ये मौजूद हैं जी, वालेकुम अस्सलाम। मुस्कान, हमारी स्किन माशाल्लाह सही है, फर्स्ट क्लास है। सागर नियाज जानियो भाई हमारे साथ मौजूद है। चलें जी, आपकी स्किन हमेशा, मैं तो चाहती हूँ फर्स्ट क्लास ही रहनी चाहिए, क्योंकि स्किन अच्छी होती ना तो जिंदगी वाकई बड़ी अच्छी लग रही होती है। तो स्किन को फर्स्ट क्लास रखिए और इस्तेमाल करते जाइए वाइट एज के प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन के प्रोडक्ट्स। ओके जी, खूबसूरतियाँ हासिल करते जाइए, प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहते जाइए। टाइम हो जाता है, जरा हम न्यूज ब्रेक की जानिब जाएंगे, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक होने वाली है, तो वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। बस आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा, सुनते रहिए, इंजॉय कीजिए और हमारा साथ दीजिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग, वाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो।

0: It's 2 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम

0: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियां, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: कराची में फुरमजामत घोट की वासी नौजवान कतल, भाव जख्मी। सुपर हाईवे ते पंजाब बस अडे वट वाकियो पेश आयो, हथियारबंद फौरन गोलियों हणी नौजवान मंसूर पुट बाजी खान शेख के कतल, आई संदस भाव राशिद शेख के जख्मी कर छो। वाक्य बाद जवाबदार फरार, लाश है जख्मी नौजवान अस्पताल मुंतकिल। पुलिस चवण है वाक्य फुर दौरान मजामत पेश आयो।

सुप्रीम कोर्ट कराची के 20 साल पुराने कत्ल केस जो फैसलो जारी कर छोड़ो। जवाबदार की सजा कल अदम अदालत रिमार्क्स दे चुको है तो एक बेगुनाह के सजा देने बदला 10 गुनाहगार के बरी कर बेहतर है। 28 अप्रैल 2006 ते बल्दिया टाउन कराची में वाक़े की FIR दाखिल की हुई। बिन जणन के कत्ल केस में गिरफ्तार जवाबदार मोहम्मद इकबाल के उम्र कैद की सजा बुधाई हुई। सुप्रीम कोर्ट फैसले में चुका है तो सिंध हाई कोर्ट में जवाबदार की सजा बरकरार रही। सरकार जी फरियादी धुर इल्ज़ाम साबित न कर सकी। रूपो छण की बुनियाद कें के डोहारी करार दई न तो सके। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट जो उम्र कैद जो बुधायल सजाओं कल अदम करार दई छोड़।

अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में बहाल थी सघनि थियूं। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल जी दावा रिपोर्ट में चयो वियो आहे त ॿई धुरियूं टाकरे जो किरदार अदा कंदड़ सां गॾिजी हिकु सुफ़े ते ॿधल चार नुकाती मुफ़ामती यादाश्त नामो तयार करण ते कम करे रहियो आहिनि। एम ओ यू में हिकु महीने ते ॻाल्हियुनि जो फ्रेम वर्क ते कयो वेंदो, मक़सदु जंग जे ख़ात्मे जो रस्तो आसान करणो हूंदो। एम ओ यू में ईरान जे एटमी प्रोग्राम हरमुज़ लंग में चिकताण घटाइण ऐं ईरान जे अफ़सोदा यूरेनियम के टे मुल्क मुंतकिल करण जहिड़े मामले ते ॻाल्हियूं शामिल हूंदियूं।

कंहिंजी डेडलाइन ते ध्यानु न आहियूं ॾींदा। ईरान अमरीका तजवीज़ुनि ते गौर करे रहियो आहे। हतमी नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान कंदासीं। ईरानी परॾेही तर्जुमान इस्माइल बकाई जो अमरीकी सदर ट्रंप जे बयान ते रद्द अमल। इस्माइल बकाई चयो आहे त दुश्मन जी जुमेरात वारी कार्रवाई आलमी कानून ऐं जंगबंदी वाइदे जी खुलियल भञकड़ी हुई। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौरु तयारु आहे।

पाकिस्तान ऐं बंग्लादेश विच में मनशा जे स्मगलिंग रोकण लाइ तारीख़ी वाइदो तइ थी वियो। वफ़ाक़ी घर वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं बंग्लादेशी हमनसब सलाहुद्दीन अहमद विच में अहम मुलाक़ात। घर वज़ीरनि जी मुलाक़ात दौरान मनशा जी स्मगलिंग रोकण लाइ तारीख़ी वाइदे ते सहियूं कयूं वियूं ऐं मयू तहत ॿई मुल्क मनशा जी स्मगलिंग ऐं इस्तेमाल रोकण लाइ हिक ॿिए सां सहकार कंदा। ॿिन्ही मुल्कनि जा वाॻियल इदारा मनशा जे स्मगलरनि ऐं नेटवर्क बाबति हिक ॿिए खे मालूमात फ़राहम कंदा। मोहसिन नक़वी बंग्लादेशी हमनसब खे सेफ सिटी प्रोजेक्ट में भरपूर सहकार जी बि आछ कई।

बालकानी चरी बरसा नौजवान को हाड़ी हाड़ी कतल वारसा जो धरनो पुलिस पोस्ट खैरपुर गंबोजे अद में जवाबदार मुरवर हिस्पानी पंजवी वरें जे नौजवान शाह नवाज पुट भुट्टो सुलंगी के कुआड़ी जा वार करे फरार थी वो नौजवान के अस्पताल नियो पे वयो त रस्ते में दम ॾेई छॾियो वारसा जो पिंगरियो जुडो रोड ते लाश रखी धरनो ट्रैफिक मौतिल जवाबदार जी गिरफ़्तारी ताईं धरनो ख़त्म न करण जो ऐलान पुलिस जो चवण आहे त वारसन ॿुधाइनि था त मामूली गाल तां जवाबदार नौजवान के कत्ल कयो आहे वाकिए जी जांच कई पई वञे कराची के गोठ धणीबख्श में बनी घर खड में किरी फोती बारन में दह सालन जो वसीम ऐं यारहं सालन जो ज़ीशान पुट अमीर मोहम्मद शाम रेस्क्यू ज़रियन मूजिबि पाणी जे खड तामीराती कम जे लाइ खोटी वई हुई बई निगर ॿुॾी फोत थी विया

ऐं मेहर जे मासूम ॿार इहो चालासो लॻी छवीह ॾींहं गुज़रण बावजूद बाज़ियाब न थी सघी। वारसनि ऐं सियासी समाजी अॻवाननि जी घंटा घर चौक ते ॾहें ॾींहं बि एहतजाजी कैंप जारी। जमायत इस्लामी सिंध जो अमीर काशिफ़ सईद शेख चकचती तौरु एहतजाजी कैंप ते पहुतो। नियाणी खे बाज़ियाब कराइण जो मुतालबो।

0: क्या आपके बाद
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: This program is brought to you by
4: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
5: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
6: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
7: GAFM 88
6: नेटवर्क,
0: सिंध की आवाज।

0: आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से, एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। ओके जी, तो बिल्कुल ये प्रोडक्ट्स आप लोगों के लिए हैं। आप लोग इस्तेमाल करेंगे, आप लोगों की खूबसूरती बढ़ेगी और आप लोग कहेंगे भाई जान हम पहले क्यों नहीं लगा रहे थे। तो बिल्कुल जी, अभी खैर देर तो नहीं हुई है ना, अभी आप लगा सकते हैं अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर जाकर, वहां से परचेज कर सकते हैं। वहां से जाकर सबसे पहली बात जो ये है वो आप ये मालूम कीजिए कि वहां पर अवेलेबल है या नहीं, क्योंकि अवेलेबल होंगे जभी तो जाकर आप परचेज करेंगे ना। तो अगर आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं तो उसके लिए आप डायल कर रहे हैं 03157990595। ये नंबर आप डायल कीजिए, अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते जाइए और वहां से जाकर आप इजीली परचेज करते जाइए, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर मिलना जरूरी है। ओके जी, तो जल्दी जल्दी से आप नंबर्स के ऊपर रब्ता कीजिए 03157990595। ओके जी, सो आज आप मुझे बता रहे हैं आपकी स्किन पर क्या प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आप जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। कुछ लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा सा परेशान हो जाते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपकी स्किन के साथ क्या ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है। ओके जी, इसी के साथ साथ यहाँ पर हम कॉलिंग वाला सेगमेंट ऑन कर देते हैं और कॉलिंग की जाने पाते हैं। और कॉलिंग वाला सिस्टम जो है ना वो भाई मुझे कई मर्तबा जो है ना ये मैं कह देती हूँ कि भाई अगर आप कल कॉल कर चुके हैं तो आज आप कोशिश कीजिएगा कि आज के प्रोग्राम में आप कॉल ट्राई ना करें, ठीक है। ऐसे ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ना वो प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं। तो जिन लोगों ने कल कॉल की थी वो आज थोड़ा सा कोशिश करें कि वो आज जरा रहने दें। और इसके साथ साथ जो है ना हम यहाँ पर कॉल लेते हैं, फर्स्ट कॉल जो हमारे प्रोग्राम की होने वाली है। और कॉलिंग नंबर आप लोगों को बताते चलें कि कॉलिंग नंबर होने वाला है 03-22-13-22-88। ये कॉलिंग नंबर आप डायल करेंगे और हमारे प्रोग्राम में कॉल के जरिए शामिल प्रोग्राम हो जाएंगे और मुझे बताएंगे कि आपकी स्किन का कौन सा ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है। ओके जी, सो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉल देखते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ओके जमालदीन भा, खुश आयो, ठीक आयो? अल्हम्दुलिल्लाह जी जी, मजे में। प्रोग्राम बुधो पे जमालदीन भा?
1: जी जी बिल्कुल।
0: अच्छा, मुख्य बुधायो तो प्रोग्राम रे नालो वगैरह अच्छे तो याद क्यों आए? ओके ओके, मुख्य बुधायो तो प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बारे में छा सोचो आ इस्तेमाल करना?
1: बिल्कुल बिल्कुल इस्तेमाल करना दे इंशाल्लाह सुबह में करीब शुरू करेंगे।
0: चलो जबरदस्त, मुख्य बुधायो तो आज स्किन जो केड़ो मसला जो को तवा की परेशान कर दुआ है। चलो चलो चलो, इो जो कौन है तुम व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम लगाया था तुम अच्छा वैसे ही लई वंदा निंड्र पूरी कंदा कयो। चलो जी जी, बुधायो बुधायो बुधायो बुधायो।
1: व्हाइटिश लवली क्रीम लगायो
0: वाह
1: पांच तेरे के सोनो पड़ायो, व्हाइटिश लवली क्रीम लगायो पांच तेरे के सोनो पड़ायो, वेनस दे आई काले ਆਇਓ

0: लगायो पंहिंजे चेहरे खे थोरो बणायो। जी भाजी
1: वाह वाह वाह वाह सफ़ाई ज़बरदस्त। वाह जो प्रोडक्ट तव्हां सिलेक्ट कयो अॼु जे प्रोग्राम में गानो ॻाइण लाइ। जी जी जल्दी खणी वठो। हलो वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह अदे जी स्पीड कुझु ज़्यादा फास्ट हुई। सो बिल्कुल जी तव्हां बि कॉल करे सघो था। कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। कॉल ड्रॉप थी हुई। ओके जी सो कॉलिंग नंबर 0332132288। तव्हां बि प्रोग्राम में कॉल करे शामली प्रोग्राम थी सघो था। अदे जमालदीन भाउ जेका ॻाल्हि कई त मुंहिंजे अखियुनि जे हेठियां हल्का काफ़ी ज़्यादा आहिनि त हिन जो पहिरियों मसलो थिए त तव्हां निंड पूरी कंदा कयो, ठीकु आहे। उन खां पोइ तव्हां वाइट एश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु कयो। वाइट एश ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां जेको आहे न तव्हांजी स्किन ते जेके इहे अखियुनि जे हेठियां हल्का पइजी विया आहिनि इहे बि ख़तम थी वेंदा। तव्हांजी स्किन जो जेको रंग आहे न उहो बिल्कुलु सॼो मैच मैच थी वेंदो। ईअं अगरि तव्हांजी स्किन सही हूंदी आहे पर तव्हांजी स्किन ते अगरि अखियुनि हेठां इहे हल्का हूंदा न पोइ वाक़ई थोरो कमु जेको आहे न ख़राबु लॻंदो आहे। सो तव्हां मूंखे ॿुधायो पिया कहिड़ी प्रॉब्लम आहे तव्हांजे फेस सां तव्हांजी स्किन सां जेका तव्हांखे परेशान कंदी आहे। वॾी ॻाल्हि आहे, वॾी ॻाल्हि आहे, अॼु ख़बर पई। ओके सो इहे कॉलर देखती कोन हमारे साथ मौजूदु आहे। हलो अस्सलाम वालेकुम। केरु असां सां गॾु मौजूदु
2: आहे?
1: केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे? दुआ लाड़काने खां कॉल कई आहे असांजी सुहिणी दुआ। ठीकु आहे मतिलब इहो कहावत आहे पुराणी त लाड़काने वारा माण्हू सुहिणा हूंदा आहिनि। अच्छा मूंखे इहो ॿुधायो त तव्हां प्रोग्राम ॿुधो पिया। अच्छा टॉपिक ते तव्हांजो छा चवणु आहे? ऑयली आहे स्किन। चलो ऑयली स्किन वारनि खे जेको ॾिनो मशरो त तव्हां ॿुधी छॾियो हूंदो। ओके ॿियो छा चवंदी तूं? हा बिल्कुलु वैसे मां कोशिशि कयां थी त मां स्किन जो डॉक्टर थी वञा जेतिरी मूंखे नॉलेज मिली वई
2: आहे।
1: अच्छा मूंखे ॿुधाए ॿियो छा चवंदी तूं? हा आवाज़ थोरो दुआ तव्हांजो कटिजे थो। हा थोरो नेटवर्क जो इशू आहे शायदि तव्हांजो आवाज़ कटिजी पियो। ओके सो दुआ ओके थैंक यू सो मच दुआ तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिल थींदा इलाही सुठो लॻंदो आहे भले तूं रोज़ कॉल कंदी करे। सो हमारी प्यारी दुआ हमारे साथ मौजूद। और हा लाड़काने वारा माण्हू सुहिणा हूंदा आहिनि पर सभु सुहिणा हूंदा आहिनि लाड़काने वारा थोरा ज़्यादा सुहिणा हूंदा आहिनि। लाड़काने वारा पहिरियां खां इस्तेमालु कनि पिया वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स ऐं थी स्किन जा प्रोडक्ट सम्झो था न हाणे तव्हां बि इस्तेमालु कयो तव्हां बि सुहिणा थी वञो। कॉलिंग नंबर आहे 0332132288। सो नेक्स्ट कॉलर हलो अस्सलाम वालेकुम। केरु असां सां गॾु आहे? नाम दोबारा बताइएगा ज़रा। ओके जी आवाज़ ज़रा आपकी थोड़ी कट कट के आ रही है मुझे ये बताएं कि प्रोग्राम सुन रहे हैं आप?
3: बिल्कुल सुन रहा हूँ प्रोग्राम।
1: अच्छा टॉपिक के ऊपर आप क्या कहने वाले हैं?
3: हमारी ऑयली स्किन है।
1: ऑयली स्किन ना मतलब बहुत सारे लोगों के साथ ये मसला है कि उनकी स्किन ऑयली है।
3: जी जी
1: चलिए आप प्रोग्राम सुनिए आपको मैं जरूर बताऊंगी कि ऑयली स्किन वाले लोग क्या करें। चले जी बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद। आपका नाम मैं नहीं सुन पाई क्योंकि नेटवर्क का थोड़ा सा मसला था लेकिन आपने हमें लाड़काना से कॉल करी बहुत शुक्रिया। और आपकी स्किन भी ऑयली है बताते हैं ऑयली स्किन वाले लोग क्या करें। लेकिन जरा कुछ कॉल्स ले लेते हैं। कॉलिंग नंबर 0332132288। सो नेक्स्ट कॉलर हेलो अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम
1: सलाम। केरु मौजूद
4: आहे?
1: नालो वराए ॿुधाइजो पंहिंजो सोणी नालो पंहिंजो वराए ॿुधाइजो। सबा अच्छा कीअं आहियो सबा ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला ठीकु। सभा सां प्रोग्राम ॿुधंदा आहियो? अॼु बि ॿुधो पिया? अच्छा टॉपिक ख़बर आहे टॉपिक छा पुछियो आहे प्रोग्राम में? अच्छा हूअ मतिलब डेली ॿुधंदा आहियो तव्हां असांजो शो? मुखे बुधायो प्रोग्राम जको कया पे न नालो तवा के अचे तो चलो हाँ तुम एक कम कजो पाने करीबी जनरल स्टोर से वही वाइट एज प्रोडक्ट जो मालूम कजो तो मिलन था या ना मिलन अच्छा वाइट एज लवली क्रीम तो सबा तुम जरूर वो मुझे चवण से ओके बो सबा तुम चवंद हलो सबा चवंद बो प्रोग्राम में तवे पे मरतबा कॉल लगी आ हलाए चाच आवाज कर चियो जी जी चलो मां फायज अली जो गानो तां के जरूर बुदाइनम बहुत शुक्रिया सबा तमा कॉल कई प्रोग्राम में पेरो मर्तबा सबा जी कॉल लगी प्रोग्राम में लगे पे छोकरी थोड़ी कंफ्यूज थी वई केड़ा कॉलिंग नंबर 0332231322 एंड 88 तमा में कॉल करे सको था ओके सो ही वारी कॉल बैठू था दिसू था त के रस सगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम
1: अस्सलाम के रस सगर मौजूद है
2: अलीजा
1: अलीजा कॉल कई है अलीजा मेरे पर खास खासा के कॉल कर दिया है अच्छा अलीजा प्रोग्राम बदो प्या अल्हम्दुलिल्लाह मजे में आज भला उर्दू ना गाला यही यो भी सही है मुखे बुधाए तो टॉपिक दे तमा छ चवंदा अलाई छो आवाज थोड़ो ही है मतलब सही न तो अचे कॉलर्स जो
2: मां चयो त मां कोई भी प्रोडक्ट लगांदी आहे न करीम
1: पोइ छा थींदो आहे
2: त मुंहिंजा दाणा निकिरी ईंदा आहिनि
1: अच्छा त तव्हां दाणनि वारो प्रोडक्ट लॻायो जेके दाणनि खे कम कंदा हुजनि क्रीम खां थोड़ो पो तवा अवॉइड कयो अगर तवा जी स्किन सेंसिटिव आ न त तवा उए प्रोडक्ट लगायो जे कि तवा जी स्किन ते जको न त सूट नथा कंदो उनन के थोड़ो अवॉइड कयो आई तवा जको न वाइट एज जी का डॉक्टर पिंपल ट्यूब आ या तवा जरूर ट्राई करे दिसियो
2: हां मु सोचो या लगाई ना
1: बिल्कुल तवा या डॉक्टर पिंपल नाले सा वठंदा न त तवा के मिली वेंदी इजीली मीरपुर खास
2: वाइट
1: एज लवली जबरदस्त या भी तवा जी स्किन ते सूट कंदी ओके जबरदस्त बियो छा चवंदी अलीजा आई निदा भी चाहे पई त मां भी गालाइंदमि सो किथे आहे गालाईंदी न इहा कुझु ज्यादा शर्मीली आहे लॻे थो तव्हां भला बैकग्राउंड ॿुधो अदी निदा
2: हेलो
1: चाला निदा खैर खैर बुधायो तमा अलाई छापे छो तमा कॉल थिंदम तमा बुधाइंदम हां
2: मुनी स्किन स्किन ऑयली
1: आहे ऑयली इज स्किन आहे मतलब तमा जो भी यू मस्ट लो आहे ओके चलो सही आहे तमा वाइट एज लवली क्रीम हणजो ऐं जेको डॉक्टर पिंपल ट्यूब आहे न उहो ट्राई करे ॾिसजो चलो ॿियो छा चवंदी निदा चलो कंफ्यूज थी वई रिलैक्स हो चलो ठीक आ थैंक यू सो मच निदा तव्हां ॻाल्हायो कॉल ते वैसे निदा ऐं अलीसा में इहो थोरो फ़र्क़ु आहे त अलीसा जेका थोरी कॉन्फिडेंट आहे ऐं निदा जेका न थोरी शर्मीली आहे ॻाल्हि सुठी ॻाल्हि आहे उनखां अलावा तव्हां बि कॉल करे सघो था कॉलिंग नंबर आहे 0332231322 प्रोग्राम में तव्हां जूं कॉल्स बिल्कुलु वठंदासीं तव्हां सां कॉल ते ॻाल्हियूं कंदासीं कचहरियूं कंदासीं तव्हां खां पुछंदासीं तव्हांजी स्किन जा प्रॉब्लम उनखां अलावा ॿी हिकिड़ी ॻाल्हि टाइम थियो आहे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठूं था उनखां पोइ जल्दी वापसी तव्हां ॾे मोटींदासीं तव्हां करी न वञिजो इते वेठा हुजो मां ओ हीअं वञी ओ हीअं मोटां थी सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग आप सुन रहे हैं वाइट एश एनडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाइट एश प्रोडक्ट्स एनडी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स सुनती रहिए और हमारा साथ दीजिए

0: ओके जी ओके सो कॉल वठंदासीं तव्हांजो कॉल्स आहिनि बिल्कुल कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-NH ओके जी सो ही वारी कॉल वठूं था ॾिसूं था केर कॉलर असां सां गॾु मौजूदु आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केर असां सां गॾु मौजूदु आहे इमाम भा ठीकु आहियो सभु ठीकु प्रोग्राम ॿुधो पिया इमाम भा हा बिल्कुलु भली अथव अलाह लॻाईंदा त तव्हां पाण चवंदा वाह वाह मज़ो अची वियो जी सफ़ा ख़ुशि आहे ॿियो छा चवणु चाहींदा मोहबतूं प्यारे भाउ जो प्रोग्राम ॿुधो पिया जी जी शामिल कयो वालेकुम अस्सलाम थैंक यू ओके जी सो बिल्कुल तव्हां बि इस्तेमाल करे सघो था वाइट एज जा प्रोडक्ट्स आहिनि जनाब ऐं दी स्किन जा प्रोडक्ट्स आहिनि ओके सो नेक्स्ट कॉल ॾिसूं था केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे हैलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम अस्सलाम
0: केरु असां सां गॾु मौजूदु
2: आहे
0: ओके सही तव्हां सखर मां कॉल कई आहे छा हाल आहे तव्हांजो ठीकु आहियो जी अलहमदिल्ला प्रोग्राम ॿुधो पिया सईद अच्छा प्रोग्राम जेको ही हाणे मां कयां पई हिनजो नालो तव्हांखे अचे थो मूंखे न ईंदी आहे निंड त मां सोचींदी आहियां मां सभिनी जो फिट आहियां मुंहिंजो इहो तव्हां कमु कंदा सखर में वञी पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर तां पुछा कराईंदा त वाइट एज जा प्रोडक्ट्स किथे किथे अवेलेबल आहिनि नालो तव्हां पको कयो आराम सां ही जॾहिं प्रोग्राम हलंदो वेंदो त तव्हांखे नाला सभिनी जा पका थी वेंदा बस बस अहिड़ी तारीफ़ न कयो अलाह माण्हू सड़ी वेंदा ॿियो कहिड़े दोस्तनि खे यादि कंदा तव्हां पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर सां वञी मालूमात वठो किथे किथे अवेलेबल आहिनि ऐं किथे किथे कोन था मिलनि इन सां ईअं थींदो त तव्हां जेको आहे न थोरो सम्झी वेंदा त किथे असांखे वञिणो आहे किथे न आहे वञिणो ऐं हिकिड़ो जेको नंबर तव्हांखे ॿुधायां पई हुन नंबर ते तव्हां राबितो करे वठो जीअं तव्हांजे क़रीबी जनरल स्टोर ते अवेलेबल थी वञनि ओके सो कॉलिंग नंबर आहे 0332-1322-NH सो छा था चओ ॿी कॉल वठो

0: ओके जनाब, तो यहाँ पर हम नेक्स्ट कॉल पे करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट कॉलर कौन हमारे साथ मौजूद है। ये कॉल तो प्यालो करी भाई। चले ये वाली कॉल है। ओके सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम जी।
0: के रस सगड़ा दो
1: झंडो
0: मरी मां। ओके झंडो मरी का तवाजी कॉल लगी। आप प्रोग्राम दो प्या
1: प्रोग्राम कुछ दिन का जी बुढो दी को शादी लगी भाई। शादी वाणो आंदा जी। हां प्रोग्राम आज बुतुआ डेली शामिल
0: थी ना। हे हे केंदी शादी हुई।
1: शादी मुजी पंजी।
0: वाह वाह शादी मुबारक है तब।
1: खैर मुबारक हो। खैर मुबारक हो। अजी असन जे लाए पर सेरो बुदायो बहुत पुराना सियाओ पर सेरो
0: बुदायो। हां हां ठीक है सेरो लाइंदा सी पर सुबाने वाली प्रोग्राम में यार तो खत्म थेन वारो प्रोग्राम। हां
1: तो तानो क्रीम मसाला कितो है दोस्त इस्तेमाल कन बे कुछ दोस्तन ने याद करा दो।
0: जी जी करी बैठो।
1: असले प्यारो दोस्त है रुस्तम खासकेली, शमन खासकेली, अमीरो बेने विचो खासकेली, शबीर खासकेली, आई खालिद लाशारी,
0: जी जी
1: का गुलाम रे बनो बैठे के दोस्त बुधन में सतरे सलाम मोहब्बत हो।
0: ओके थैंक यू प्रोग्राम में कॉल गई। दोस्तन जलाए भावट केडी मोहब्बत हुई दसो ता। ओके सो ही वाली कॉल उठो दावस प्रोग्राम जी लास्ट कॉल होंदे ठीक है दिसु के रस सगर मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम बाजी केड़ा दवा में कुछ आयो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। अधो सगट मौजूद है
2: मोहम्मद अजीम राजीडी पेने।
0: ओके अजीम भा छाला कुछ आयो।
2: दुआए बाजी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ता कुछ आयो।
0: अल्हम्दुलिल्लाह अजीम है प्रोग्राम दो पे अजीम भा।
2: जी जी बाजी प्रोग्राम बुधवार
0: 4 बजे तो प्रोग्राम जो
2: प्रोग्राम बाजी यको बुधना हो ता जो जेको भी खणी ला तो बे।
0: अच्छा मुख्य बुधाए ता पाजे करीबी जनरल स्टोर ता मालूमात जरा वठी जो ता वाइटेज दा प्रोडक्ट्स उते मिलन न था
2: बाजी सुबारे ता कंफर्म करे बुधाई
0: नो मा। जबरदस्त बियर नेक्स्ट टाइम ता माची कॉल आगे ते ता मुखे जरूर बुधाए जो।
2: जी जी बाजी कॉल भी वडी दुखी लगन या बाजी।
0: हां या गाल बिल्कुल आ ता ट्राई कजो ता माची कॉल लाजमी लगंदी।
2: मैं
0: ओ छा चवंदा प्यारा भा।
2: बस बाजी सजी टीम जे सलाम ता के स्पेशल सलाम बाजी।
0: ओके थैंक यू सो मच अजीम भा तमा कॉल कई इलाही सुठो लगो माशाल्लाह तमा सा गाल आए नहीं उन खा अलावा जेको आसो बस ही लास्ट कॉल हुई सनी प्रोग्राम थी। हाँ या हकीकत आदे जो नालो याद ना है पर झंडो मरी याद आ सके झंडो मरी का कॉल कंदू आवे चाड़ो काफी टाइम खा माशाल्लाह शादी थी वे सदी जी। ओके सो गानो लगायो आई प्रोग्राम में जिको आसा वट थोड़ो वनी टाइम बचो है असो पैनल ते कुछ मैसेजेस है रसूलाबाद का आवे दोस्त संबानी भाई हमारे साथ मौजूद। वालेकुम अस्सलाम अदी। उफ गर्मी डाढ़ी आहे बिल्कुल गर्मी डाढ़ी आहे भा आई छाता चो यो कमकार भी कयो था बिल्कुल जी कमकार भी लाजमी आहे असा भी कमकार कयो था ता भी कयो
3: में हसती हो तो क्या रात में रोती होगी
0: आई हाय। अच्छा ये दड़ावान से डॉक्टर राम फकीर हमारे साथ हैं और जे एम जोगी फकीर हाय सिद्रा आप कैसी हैं मैं ठीक हूँ आप बताएं आप कैसे हैं। ये हमारे साथ है जेबुल निसा मोरो से हमें सुन रही हैं बहुत शुक्रिया स्वीटी और गोठ नबीदात बमरू नारो खाम गरम सर्द हवाओं में गरम वरी सर्द हवाओं में सानो प्रोग्राम बुधन पया इमाम डिनो बमरू भा तांजु मोबदू आए और ये हमारे साथ है सागर न्यास चांडियो भाई आपका बहुत शुक्रिया। चाचा खालिद हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया चाचा खालिद। ओके ये हमारे साथ मौजूद हैं जी सदाकत हुसैन मियानी साहब बचल शाह मियानी सखर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और सिटी शहदादपुर से मीर अलाउद्दीन खान टालपुर आपका शोवरी नाई से बहुत शुक्रिया जी। जमीला हमें सुन रही हैं थैंक यू वेरी मच। मायरा हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया मायरा। अच्छा वो कॉल हाँ वाकई खुद ही कट हो गई अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा प्रेमचंद भाई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया। मीर मुमताज अली जतोई भाई वालेकुम अस्सलाम मोहब्बतों तांजू प्रोग्राम दो पया और सागर अली रजा हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया। सनाउला बिरोई हमारे साथ हैं थैंक यू जी थैंक यू। अच्छा हिदायतुल्लाह अहमदानी आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं जल्दी से आप लोगों के कुछ ना नाम ले लेती हूँ और ये फराज अली बिरोई हमारे साथ मौजूद है बहुत शुक्रिया। अच्छा गुलाम हैदर फुलपोटो हमारे साथ मौजूद है खैरापुर मीरज से वेलकम। अच्छा किशोर भा मां मोबाइल मथे कंदमि त वरी लिसनर्स जो जेको आहे न आवाज़ ई कोन ईंदो माइक में सो लिसनर्स खे मोबाइल मथे करणी पवंदी और सिबगतुल्ला रांझा हमारे साथ मौजूद है भाई आपको वेलकम करते हैं और ये हैं जी वफा मीर मुनव्वर अली अनवर भाई भी आ चुके हैं थैंक यू सो मच मोहम्मद जमान हमारे साथ मौजूद है वेलकम महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ मौजूद है आपको शो पसंद आ रहा है बहुत शुक्रिया जी और अमानुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद है वेलकम किशोर भाई भाभी को बोले कि जरा खुद ही परचेज कर ले जार खाली हो जाएगा तो फिर यूज कर लीजिएगा दर्दे दिल आप बहुत प्यारी हैं अच्छा फजीला सिंधी भी हमारे साथ मौजूद है फजीला सिंधी आपको दिल से वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं और आपने कायनात को और सभी सुनने वाली लड़कियों को सलाम दिए हैं सो वालेकुम अस्सलाम

ओके जबार वे सर आपका भी बहुत शुक्रिया। ओके सो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। यहीं पर आप लोगों से हमें इजाजत लेते वरी इंशाल्लाह तमाम से मुलाकात मुझे सुभाने वाले प्रोग्राम में थेण वाली आए। सो पांजो ओ हेलो सरो ख्याल रखना किते का गलती थी उजे तमाम माजरत कया भाई जिना फीडबैक रेजी चुका है जिना गाना रेजी चुका है सबने का माजरत कयूं था। सो मुकलानी नाही बाबू सिन सलामत सा सलामत अल्लाह हाफिज बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर।

0: It's 3 PM. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: करण जो मुतालबो करे छॾियो. बिजली, गैस ऐं पेट्रोल जी क़ीमतूं लाॻत तहत रखण जो मुतालबो. IMF जो विचोबर में जंग बावजूदि पाकिस्तान पारां मुआशी हदफ़नि हासिलु करण जो एतिराफ़. हलंदड़ साल पाकिस्तान तरक़ी जी शरह ट्रेड आई 6% ताईं रहण जो इम्कान ज़ाहिर. IMF जी एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जे मुआशी प्रोग्राम लाइ ट्रेन तयारी जी मंज़ूरी ॾेई छॾी. IMF पारां जारी पधराई मूजिबि पाकिस्तान में बेरोज़गारी जी शरह 6.9% ऐं महांगाई जी शरह 7.2% रही सघे थी. टैक्स नेट खे वधाइण वारनि कोशिशुनि में बि तेज़ी आणणी ज़रूरी आहे. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो. सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चांग सां मुलाक़ातूं कंदो. ज़रियुनि वजो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23-25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे दौरे ते चीन वेंदो. पाक चीन लाॻापनि खे 75 साल मुकमल थियण जे थींदड़ तक़रीबन में बि शिरकत कंदो. वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआहिदनि ते बि सहियूं कयूं वेंदियूं. CPEC ऐं वापारी लाॻापनि खे वधीक थी ॾियण ते बि ॻाल्हियूं कयूं वेंदियूं.

अमेरिका ईरान में थींदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू थियण जो इम्कान। मामला तय न थियण ते सदर ट्रंप जी वरी ईरान खे ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण जी धमकी। अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जनरल रिपोर्ट में चयो आहे त अमरीका ईरान सालसी कंट्रियुनि सां गॾिजी शुरूआती मुआहिदे ते कमु करे रहिया आहिनि, जंहिं तहत हिकु महीने ताईं ॻाल्हियुनि लाइ फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि अॼु ईरान तरफ़ां अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब मिलण लाइ पुरउमीद। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ़ वञी सघूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं।

पंहिंजो कमु करे रहिया आहियूं, कंहिं जी रेड लाइन ते को बि ध्यानु न आहे। ईरानी पटेई वज़ीर तर्जमान इस्माइल बाक़ाई चयो आहे त तेहरान अमरीकी तजवीज़नि ते गौर करे रहियो आहे, नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं। ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयारु आहे, सूरत हाल ते बि नज़र अथसि।

ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो। अमरीकी कुझु इदारे सी आई ए ट्रंप इंतज़ामिया खे आगाह करे छॾियो। आलमी नज़रियाते इदारे मूजिबि सी आई ए पंहिंजे नए रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त ईरान वधीक 6 महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो, जंहिं सबबि ईरान अमरीका जो दबाव घणे हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे। तेहरान जे ॻाल्हियुनि में सुस्ती जो सबबि इहो ई आहे। भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी पाकिस्तान खे दुनिया में नई सुञाणप ॾिनी आहे। अमरीका ईरान जंग में किरदार था करण जो वॾो सबबु भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी आहे। लाहौर में तकरीब ख़िताबु कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर हसन इक़बाल चयो आहे दुश्मन खे हक़ वारी जंग में शिकस्त ॾिनी, हाणे तरक़ी वारी जंग में कामयाबी माणणी आहे। तरक़ी वारी जंग न खटी त हक़ वारी जंग में मिलियल कामयाबी बि घणी देरि बरक़रार रखी न सघंदासीं। इस्तेक़ाम लाइ मज़बूत मैशत ज़रूरी आहे।

अकबर जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में रैलियूं, कराची में डॉक्टर्स जी NICH खां जनाह अस्पताल ते रैली, पाक फ़ौज खे भेटा पेश, टनो मोहम्मद खान में पुलिस जे जवाननि पारां जंग में कामयाबी खे साल मुकमल थियण ते रैली कढी वई, पनवाकल में पाक फ़ौज जी हिमायत में रैली, खैरपुर में मेडिकल कॉलेज खां सिविल अस्पताल ते रैली कढी वई, लाड़काणो में तालीम खाते पारां जंग में कामयाबी जी ख़ुशी में रैली कढी वई, पीर जो गोठ में मुख़्तलिफ़ स्कूलनि जे उस्तादनि, शागिर्दनि ऐं शागिर्दनि पारां रैलियूं कढी वयूं, भारत खे इबरतनाक शिकस्त ॾियण ते पाक फ़ौज खे भेटा पेश कई वई।

सनबर सां कारे इल्ज़ाम लॻण बाद पणियल औरत मुबैना तौर ते फाउ खाई आबगाद करे छॾियो। घोट लोंग ब्रह्माणी में शादीशुदा औरत सलमा ज़ाल मेहू ब्रह्माणी कारे इल्ज़ाम लॻण बाद मुबैना तौर ते घर में फाउ खाई आबगाद कयो। फौती औरत जी माउ चयो आहे धीअ खे मुड़ुसु केतिरा ई साल अॻु छॾे ॾिनो हो। ॾह ॾींहं अॻु कारे जी तोहमत मणे इल्ज़ाम हेठि आयल नौजवान खां 50,000 चटी बि वरिती हुई। कारे जो इल्ज़ाम लॻण बाद नियाणी आबगाद कयो। मुड़ुस ख़िलाफ़ क़तल जो केस दाख़िल कयो वञे।

0: सखर जे अदालत तहवील में ॾिनल औरत गुलाम भारो जे कतल केस में गिरफ़्तार टिनी जवाबदारनि खे 4 ॾींहं जिस्मानी रिमांड ते पुलिस हवाले करे छॾियो। पुलिस गिरफ़्तार जवाबदारनि मक़तूला जे मुड़ुस सिकील अदो वालिद इमदाद ऐं मामे मौलादात भारो खे कंज्यूमर कोर्ट में पेश कंदे मौक़िफ़ अख़्तियार कयो। जवाबदारनि खां वधीक जांच करणी आहे। 14 ॾींहं जो जिस्मानी रिमांड ॾिनो वञे। अदालत पुलिस जी सज़ा रद्द कंदे 4 ॾींहं जो जिस्मानी रिमांड मंज़ूरु कयो। केस जी जांच बि रोड़ीअ खां सखर बंदि कयल। तगवाणी में शहरी इताद ऐं शहरी एक्शन कमेटी जे वधंदड़ बदमनी ख़िलाफ़ धरणो। शहरनि बदमनी ख़िलाफ़ रैली कढी शहर जो गश्त करण बाद वेन टर्मिनल ते धरणो हयो। अॻवाणनि मौजूदु पुलिस जी नाअहली सबबु शहर ऐं भरपासे में चोरी फुर्ज वारदातूं वधी पियूं आहिनि। आला अख़्तियारी नोटिस वठनि बदमनी ते ज़ाब्तो आणे अमन बहाल कराइनि। नाज़रीन रूस यूक्रेन 3 ॾींहनि जी जंगबंदी ते राज़ी। अमरीकी सदर ट्रंप रूस ऐं यूक्रेन में अॼु खां 11 मई ताईं जंगबंदी जो ऐलान करे छॾियो। ट्रंप चयो आहे जंगबंदी दौरान हर क़िस्म जूं फ़ौजी कार्रवायूं रोकियूं वेंदियूं। ॿई मुल्क क़ैदनि जी बि ॾे वठि कंदा ऐं ॻाल्हियूं बि जारी रखंदा।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो?
3: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक कलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखे। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
6: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
7: पंहिंजो शहर, पंहिंजो घर, सकरन ऐं सकरन जो आवाज़
8: GFM 90.8।

0: तू तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा, विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देरि छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूरु व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे, पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327

दोपहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: It's 5 p.m. This time check is brought to you by.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मैं डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
5: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
2: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
0: तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल की तकलीफ, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़न जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलण, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।
7: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

0: असांजो पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो।
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडियंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
4: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600cc कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
5: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
6: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनमी मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघि, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अधमथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां

0: गलन, शुगर, दिमागी कमजोरी, खारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हें सभिनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोजानो सुबुह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताईं, बरोज जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-9984-7063।
1: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत व यकजहती का पैगाम, यहां वहां GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: सकरण की हो तो आवाज भी सकरण की है।
1: सुनते रहो जी FM 90.8।
0: सकरण की हो तो आवाज

0: छा अवां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और

0: ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे,
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: सुनिए

0: इलाही माण्हू मूं वटि आहिनि जेके मां ॾिसां थो, उन्हनि जा अखाणा ॾिसां थो। मूंखे माना को तंग न करे त मां गवर्नमेंट सां वधीक हेल्प कयां।
1: तव्हांखे
2: बेसिकली ही इज़ माना वर्किंग एज़ अ सुपर हीरो। अगर कोई पंहिंजी सुसाइड ॾिसो आसमान मां खिलाई मकलो हर टाइम सुपरमैन त न ईंदो, जेके असां इमेजिनरी हिकिड़ी दुनिया ठाही आहे आयरन मैन, सुपरमैन, मार्वल सीरीज, जेके असां जेके माण्हू ऐं जेके अगरि पंहिंजी सोसाइटी में अगरि काई बि शइ खे पॉइंट आउट कयूं था, कयूं था पिया, अगरि काई बि अहिड़ी क्रिमिनल एक्टिविटी खे रेस्ट्रिक्ट कयूं था, बेसिकली वी आर डूइंग द वर्क ऑफ सुपर हीरो, चाहे उहो नंढे बेसिस ते कयूं चाहे वॾे बेसिस ते कयूं। चलो अवांखे मौको ॾियूं पिया, थोरो इलाइक़े जो पॉइंट आउट करायो, कहिड़ो एरिया आहे, किथे पई खुलियाम हले मंशात? जेके आहिनि त पुलिस वारा आहिनि जेके त इन्हनि एरिया खे पॉइंट आउट कयो आहे, उते वञी करे भराए महिरबानी मंशात अगरि हले पई त उन्हनि खे हथी ॾियो, उन्हनि खे वञी करे जेको आहे त
3: कुझु पॉइंट हिते एड कंदुमि
2: पकिड़े जो।
3: जी बिल्कुलु टूरिस्ट टिप, जीअं हाणे अधे वारनि हिकिड़ो ज़िक्र कयो त पुलिस वारनि हुते वॾो बहितरीन रोल प्ले कयो
2: आहे।
3: मां आई हेड्स ऑफ देम, माना मां सल्यूट पेश कंदुमि, सलाम पेश कंदुमि इन्हनि पुलिस वारनि खे जेके इन एक्टिविटीज़ खे रोकनि था ऐं पंहिंजी जाननि जो क़ुर्बानी बि ॾियनि था, पंहिंजी जाननि खे जेको आहे न रिस्क ते रखी करे इन्हनि एक्टिविटीज़ खे जेको आहे न बंदि कराइनि था। सो मां जे अॻुणे चयुमि त सुपर हीरोज़ मथो न ईंदा आहिनि, सुपर हीरोज़ असांजे अंदरि ई
2: हूंदा।
3: अगरि इहे पुलिस वारा अगरि पंहिंजी डे नाइट पंहिंजी पब्लिक जे करे अगरि पंहिंजी लाइफ खे रिस्क ते खणी हलनि था, फॉर मी दे आर आयरन मैन, फॉर मी दे आर सुपरमैन, फॉर मी दे आर द बैटमैन। सो मार्वल ऐं डी सी खे ॾिसणु न खपे, असांजे अंदरि ई सुपर हीरोज़ अवेलेबल आहिनि। वॾी तमामु इहा अप्रिशिएबल ॻाल्हि आहे, मां अप्रिशिएट कंदुमि उन पुलिस वारनि खे जेके इन्हनि जॻहियुनि ते वञी करे ऐं असांखे प्रोटेक्ट करनि था ऐं जेको आहे न इनवाय पूरे जो पूरे जेको आहे न सोसाइटी खे क्लीन रखनि था पिया इन नासिर खां।
2: बिल्कुलु शहबाज साहब, प्रोग्राम जो वक़्तु ॼाणी ते पहुतो आहे, इलाही शयूं पंहिंजी रहिजी वियूं आहिनि अञा।
3: वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट टॉपिक इंशाल्लाह। सो
2: लास्ट में कीअं अवां असांजे जेका व्यूअर्स खे पैगाम ॾींदा त जीअं उहो जेका इहा आहे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट आहे ऐं मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी आहे, इन खां बची सघनि?
3: मां हिकिड़ो इहो ई चवंदुमि त दे डू डिस्टिंग्विश बिटवीन,
2: ओके,
3: अगरि तव्हां खां प्रॉपर्टी ॾियो था पिया त कोशिश कयो त उनजा आई विटनेस ज़रूरु हुजनि।
2: ऑल राइट,
3: ठीकु आहे। आख़िर में इहे चवंदुमि त अगरि सपोज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट थियो आहे त पहिरियों ई तव्हां पंहिंजे कंसर्न एस एच ओ खे, पुलिस खे पंहिंजी इंफॉर्मेशन ॾियो, एस पी कंप्लेंट सेल ते ॾियो, उन्हनि जे ख़िलाफ़ तव्हां अगरि तव्हां वटि रसीदूं आहिनि, अगरि तव्हां वटि एविडेंस आहे, तव्हां वटि वीडियो आहे, तव्हां वटि मैसेजिस आहिनि, तव्हां वटि वाट्सअप कॉल्स आहिनि, अगरि तव्हांखां को घुरे त तव्हां पहिरियों त तव्हां एंटाइटलमेंट ॾेखारियो, मालिकी ॾेखारियो, इहा शइ तव्हांजी आहे, उन खां पोइ तव्हां इन्हनि जे लाइ ईज़ीली एफ आई आर दाख़िल करे सघो था पिया। त मुंहिंजो मैसेज इहो ई हूंदो त अगरि कोई बि कंहिं बि शइ माण्हू खे तव्हां अमानत ॾियो त कोशिशि कयो त तव्हां उनखे जेको आहे न हैंड ओवर करण जे टाइम हैंड ओवर करण जे टाइम कैटेगोरिकली ॿुधायो त मां तव्हांखे अमानत तौर थो ॾियां, काइंडली हिन में ख़यानत न कजो।
2: अच्छा, हिन ते मुख़्तसिर इहा ॻाल्हि मुंहिंजे ज़हन में अची वई, अक्सर मूं ॾिठो आहे मुंहिंजे साम्हूं सोसाइटी में अहिड़ा माण्हू आहिनि जिन खे अगरि अमाउंट मनी वग़ैरह असां उन्हनि खे अमानत लाइ रखिया आहियूं पिया न, त हू चवंदा आहिनि हीअ ब्लेसिंग ऑफ डिसगाइज़ थी वियो आहे, असां हिन अमाउंट खे यूज़ कंदासीं पोइ आहिस्ते आहिस्ते किस्तनि में मोटाए ॾींदासीं उन्हनि खे। त इहो त असां चऊं न त हू बाक़ाइदा तौर ते ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कनि पिया, अमानत में ख़यानत करे रहिया आहिनि ऐं स्पेशली जेको
4: It's 6 p.m. This time check is brought to you by
5: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे,
3: ठीकु आहे न बाबर,
2: त लिसनर्स बिल्कुल प्रोग्राम जे वक्त भी पंहिंजी पुॼाइणी थी पहुतो शहबाज़ हफ़ीज़ साहब जेको आहे त असांखे सुठी नॉलेज ॾिनी आहे अबाउट द टॉपिक ऐं तव्हांजी महिरबानी शहबाज़
3: साहब सुठो लॻो आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बी रिटर्न इन द सेम प्लेस विद यू
2: अच्छा तव्हां शुरू में चयो त तव्हां जेको आहे त इहो जेको ॿ टे प्रोग्राम्स में तव्हां न अचे जेको हुनजो तव्हां रीज़न
3: मुंहिंजो रीज़न बाबर इहो त आई वॉज़ बिज़ी इन माई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ामिनेशन अलहमदुलिल्लाह मां क्वालिफाई कयां सो आई वॉज़ वंस अगेन आई एम गोइंग टू अपीयर इन इंटरव्यूस
2: इंशाल्लाह
3: कुझु एग्ज़ामिनेशन ॿिया बि आहिनि प्लस कॉलेज जा कुझु लेक्चर्स जा प्लस में असाइनमेंट्स वग़ैरह आहियूं जंहिंजे करे मां तव्हांखे टाइम न ॾेई सघियुमि बट मूंखे ख़ुशी आहे त तव्हांजे जेके पैनल एडवोकेट्स आहिनि जीअं सर अमजद साहबु अची वियो जेके ॿिया ईंदड़ असांजा पैनल एडवोकेट्स आहिनि उन में मां हिनखे बिग शाउट आउट ॾींदुमि त उहे बि तमामु सुठो तव्हां सां गॾु कॉपरेट करनि
2: था ऐं
3: जेको तव्हांजो विज़न आहे लीगल कॉर्नर जो हुनखे कैरी ऑन करे अॻिते खणी हलनि था पिया मुंहिंजो त ख़्वाहिश इहा ई आहे कि आई शुड नॉट बी ओनली द वन हेयर तव्हां सां गॾु पूरी टीम हुजे पैनल जी कंहिंखे हर वीकेंड ते अची करे तव्हां कंहिं पंहिंजे आवाम खे जेके बि आहिनि उहो डिफरेंट क़िस्म जी लीगल नॉलेज प्रोवाइड करनि ऐं सोल्यूशन्स ॾेई सघनि हुननि खे
2: ऑल राइट सो व्यूअर्स तव्हांजी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में शामिल थिया सभई ऐं कंहिंजा अगरि फीडबैक सही जी विया हुजनि हुननि खां मां माज़रत खायां टॉपिक सां रेलिवेंट
1: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर
4: दौरान पंजाब पानी खड़न लगो इरसा में सिंध जो नुमाइंदे मामले ते खामोशी अख्तियार करे वरती ज़रियन मूजिब तकरारी कैनाल खोलण लाइ पंजाब हुकूमत इरसा खां इजाज़त बि नाहे वरती पंजाब पारां बिना इतलाउ जे तकरारी कैनाल्स मां पाणी खणण बाद सिंध में पाणी बोहरान संगीन थी वियो आबादगार सख़्त परेशान अमेरिका ऐं ईरान में ईंदड़ हफ़्ते इस्लामाबाद में ॿीहर ॻाल्हियूं शुरू थियण जा इम्कान मामला तय न थियण ते सदर डोनाल्ड ट्रंप जी वरी ईरान खे ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करण जी अमरीकी अख़बार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में चयो आहे त अमरीका ऐं ईरान ट्रैकड़ी कंदड़ धुरियुनि सां गॾिजी शुरूआती मुआदे ते कम करे रहिया आहिनि जंहिं तहत हिक महीने ताईं ॻाल्हियुनि लाइ फ्रेमवर्क तय कयो वेंदो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बि अॼु ईरान तर्फ़ां अमरीकी तजवीज़ुनि ते जवाब मिलण लाइ पुरोम आहिनि डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां मामला तय न थिया त ॿीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तर्फ़ वञी सघूं था प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में ॿियूं शयूं बि शामिल हूंदियूं पंहिंजो कमु करे रहिया आहियूं कंहिंजी डेडलाइन ते को बि ध्यानु नाहे ईरानी परडेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त तहरान अमरीकी तजवीज़ुनि ते गौर करे रहियो आहे नतीजे ते पहुतासीं त ऐलान करे छॾींदासीं ईरानी फ़ौज समूरनि सलाहियतुनि सां मुकमल तौर ते तयारु आहे सूरत हाल ते बि नज़र रखियल आहे ईरान अञा बि केतिरा ई महीना अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो अमरीकी गुझे इदारे CIA ट्रंप इंतिज़ामिया खे आगाह करे छॾियो आलमी नशरियाती इदारे मूजिब CIA पंहिंजी नई रिपोर्ट में ॼाणायो आहे त तहरान वधीक चइनि महीननि ताईं अमरीकी नाकाबंदी बर्दाश्त करे सघे थो जंहिं सबबि ईरान अमरीका जो दॿाउ घणे हद ताईं क़बूल न करे रहियो आहे तहरान जी ॻाल्हियुनि में सुस्तीअ जो सबबि बि इहो ई आहे वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ हलंदड़ महीने चीन जो दौरो कंदो सदर शी जिनपिंग ऐं वज़ीर आज़म ली चियांग सां मुलाक़ात कंदो ज़रियनि मूजिब वज़ीर आज़म शाहबाज़ शरीफ़ 23 खां 25 मई ताईं 3 ॾींहनि जे सरकारी दौरे ते चीन वेंदो पाक चीन लाॻापन खे 75 साल मुकमल थियण ते थींदड़ तक़रीबुनि में शिरकत बि कंदो वज़ीर आज़म जे दौरे दौरान पाकिस्तान ऐं चीन विच में मुख़्तलिफ़ मुआदनि ते सयूं बि थींदियूं सीपेक ऐं वापारी लाॻापन खे वधीक हथी ॾियण ते बि ग़ौर वीचार कयो वेंदो

IMF सरकारी इदारनि जी निचकारी ऐं सुधारनि वारो अमल तेज़ करण जो मुतालबो करे छॾियो। बिजली, गैस ऐं पेट्रोल जूं क़ीमतूं लाॻत तहत रखण जो मुतालबो। IMF जो विच ओभर में जंग बावजूद पाकिस्तान पारां मुआशी हदफ़ हासिल करण जो बेतराफ़। हलंदड़ साल पाकिस्तान जी तरक़ीअ जी शरह 3.6% ताईं रहण जो इम्कान ज़ाहिर। IMF जी एग्ज़ीक्यूटिव बोर्ड पाकिस्तान जी मुआशी प्रोग्राम लाइ 3 जाइज़े जी मंज़ूरी ॾेई छॾी। IMF पारां जारी पधिराई मूजिबि पाकिस्तान में बेरोज़गारीअ जी शरह 6.9% ऐं महांगाईअ जी शरह 7.2% रही सघे थी। टैक्स नेट खे वधाइण वारनि कोशिशुनि में बि तेज़ी आणण जी ज़रूरत आहे। भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी पाकिस्तान खे दुनिया में नई सुञाणप ॾिनी आहे। अमेरिका ईरान जंग में किरदार अदा करण जो बि वॾो सबबु भारत ख़िलाफ़ जंग में कामयाबी आहे। लाहौर में तक़रीब खे ख़िताब कंदे वफ़ाक़ी वज़ीर अहसन इक़बाल चयो आहे त दुश्मन खे हक़ वारी जंग में शिकस्त ॾिनी, हाणे तरक़ीअ वारी जंग में कामयाबी माणणी आहे। तरक़ीअ वारी जंग न खटी त हक़ वारी जंग में मिलियल कामयाबी बि घणी देरि बरक़रार रखी न सघंदासीं। इस्तेहकाम लाइ मज़बूत मैशत ज़रूरी आहे।

0: हक वारी जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते सिंध के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों। कराची में डॉक्टर्स की NICH का जना अस्पताल ते रैली। पाक फौज के भेटा पेश। टंडो मोहम्मद खान में पुलिस जवानन पारा जंग में कामयाबी के साल मुकम्मल थियण ते रैली कढ़ी वही। पनियाकिल में भी पाक फौज की हिमायत में रैली। खैरपुर में भी मेडिकल कॉलेज का सिविल अस्पताल ते रैली कढ़ी वही। लाड़काने में तालीम खाते पारा जंग में कामयाबी की खुशी में रैली कढ़ी वही। पीर जो गोठ में भी मुख्तलिफ स्कूल के उस्तादन शागिर्दान शागिर्दियाणियों पारा रैली कढ़ी वयूं। भारत के बर्तनाक शिकस्त दियण ते पाक फौज के भेटा पेश।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: किरु शौक हो ना तो के मुझे रो पाए तैयार थेण जो
3: तू आज भी हसी
2: थोरो पाए तो देखार
4: ना मां मां थकी पई आया
2: ना पुट ये थकना है रत जी कमी है दिसता केडो ना फिको थी हुआ है तुंजो चेहरो
4: छा कया मां
2: 6 महीना थी वैन पुट तू उम्मीद साही ऐ हाने वनी तो शुरू कई है फौलाद जी गोरी कच्चू भाजू खाईंदी कर पुट तोखे खबर है असा त मेवन जो खलूं खाई विंदा हुआ से उनन साई त खून ठांदो है इनसा न तोखे कुछ थिंदो अ नई बा रखे पुट हाने तू मां थण वाली आही पहंजो ख्याल रखन बियन खांप वधिक जरूरी है।
3: मेरी बातें तेरे जिम्मे अब ये तुझको निभानी है।
5: जदे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
6: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल जेका ॾे कुदरती निखार साफ़ नरम ऐं रोशन चेहरो पहिरें इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।
7: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन जी खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हन सबनी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज कयो विंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 वगे खां शाम 5 वगे ताई बरोज जुमू मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधिक मशोरे ऐं राबते जे लाइ 0327-99-84-763।
8: सिंध के माथे का झूमर
9: GFM 88 नेटवर्क
8: सिंध की आवाज़।

0: It's 6:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: Khoobsurti hai jo asal raaz. सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अव्हां जी स्किन खे बणाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ ॿिन ॾींहनि में डार्क स्पॉट्स खे करे ख़तम ऐं ॾिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर ॾींहं जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
3: सॼो ॾींहुं ॾिसां थी तोखे परेशान घुमंदी रही पहिरियों भेरो मां थी रही आहीं न मुझो भी यो ही हाल हो
4: खबर ना है तो आही सब कुछ किया कियो नानी मां ता एतरो थकी थी पवा छा कयो हो तवा
5: हो पहले 6 महीने सिर्फ मां का दूध अब दूध कैसे आए ये जरा पूछ
4: किए

0: जॾहिं ॿिए ॿार जे सोचण जो वक़्त अचे त ॿ साल तूं सोचजे, बसि इहा ॻाल्हि कम ईंदी।
1: जॾहिं नई माउ बणजण जो डपु हुजे त कंहिं पुराणीअ जी ॻाल्हि ॿुधो। हमल जे दौरान रत जी घटिताई खे बि नज़रअंदाज न करियो। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारू ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, DHMS सिंध, RHMP पाकिस्तान, जनरल फिज़िशियन, माहिर अमराज, मादो ऐं जिगर, गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज, पुराणी खंघ, ज़ुकाम, दिल जी तकलीफ़, अध मथे जो सूर, अखियुनि जी ख़ारिश, जोड़नि जो सूर, बुखार, ॿारनि जो देर सां हलणु, शुगर, दिमाग़ी कमज़ोरी, ख़ारिश, नासूर, खूनी वबादी बवासीर, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत, टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं, बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस: सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक, शेरवानी कीरिया, मेहरापुर रोड, सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क।

0: It's time to commercial break.
1: कुदरती जिजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो बहरी इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज़।

0: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरें ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज
1: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज़।

5000 क्यूसिक एंड टीपी लिंक कैनाल जरिए 7467 क्यूसिक पानी खड़न लगो। इरसा में सिंध के नुमाइंदे मामले ते खामोशी अख्तियार करे वरती। जरियन मूजिब तकरारी कैनाल खोलन लाए पंजाब हुकूमत इरसा का इजाजत भी ना वरती। पंजाब पारा बिना इतला के तकरारी कैनाल्स में पानी खड़न बाद सिंध में पानी बुरान संगीन थी वो। आबादगार सख्त परेशान।

पे डार्क जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह शुआओं से तहफ्फुज़ दे, कोर्टिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और

जी दोस्तों, या तमाम के म्यूजिक सुनाने बुलाएंगे प्रोग्राम में शामिल छह नया तरीकेकार अवां के ऑल डेली खबर आए प्रोग्राम की शुरुआत में तमाम प्यारे प्यारे गानों अवां सब इन जिले प्ले करे छो आए गानों बुध इंजॉय कर मुसा गड रहो हेमे ब्यूटी शो में पूरे 8 वगे ताई। जी दोस्तों, या तमाम के म्यूजिक सुनाने बुलाएंगे प्रोग्राम में शामिल छह नया तरीकेकार अवां के ऑल डेली खबर आए प्रोग्राम की शुरुआत में तमाम प्यारे प्यारे गानों अवां सब इन जिले प्ले करे छो आए गानों बुध इंजॉय कर मुसा गड रहो हेमे ब्यूटी शो में।

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जल्द मां दाग धब्बा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी दोस्तों हेमे ब्यूटी शो में शमन मीराली जी आवाज़ में तमामु प्यारो गानो अवां ॿुधियो उमीद आहे तव्हां खे पसंदि आयो हूंदो सो लेट्स सी अॻिते तव्हां जे लाइ अञा मां वटि तमामु प्यारा प्यारा गाना अथव मज़ो थी वेंदव हिन थधी थधी मुंद में ऐं बाक़ाइदा तौर ते थधड़ियूं थधड़ियूं हवाऊं हली रहियूं आहिनि ऐं उमीद आहे तव्हां मच ॿारे करे इन जा जेके न तमामु घणियूं एहतियात कंदा हूंदव हिन मुंद जा ठीकु आहे सो अव्हांखे ख़बर आहे दोस्तो त प्रोग्राम में सेगमेंट आहे सॉन्ग सुञाण मां हिकु भेरो ॿीहर म्यूज़िक प्ले कयांव पियो तव्हां इहा सुञाणे ॿुधाईंदव त कहिड़े गाने जी म्यूज़िक आहे ठीकु आहे ॿुधो सभई और सां

0: जी दोस्तों बिल्कुल तांगिया मोगे सुनाने बुधाइंदो केड़े गाने जी म्यूजिक का प्रोग्राम में शामिल थेंडिया तरीकेकार मावा के ऑलरेडी बुधाए चुको आया सो कुछ वॉइस नोट्स हैं ते हां बाद ने 8881 वारम मैसेजेस ठीक है बुदो खौर सा
1: बाबर बा मुझी फरमाइश है मस्त मंदिर मुझे दोस्त बदे तो वाकफ अली बुट्टी विचा सांगी हां चाचू अशरफ अली नीचे मुझे तरफ सलाम
0: चलो वालेकुम अस्सलाम मदा अज फरमाइशी फॉर्मेट कौन है नलाय फरमाइश करने का पासो गयो ठीक है सो तमाजी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल जाए करो भी वॉइस नोट
2: अस्सलाम वालेकुम बाबर बा चाहला खुशायो ठरी मीरवा खेरपुर मिरस का सिंगर शायर सजाद अली चनू तवा सा मुखातिब है तवा जो प्रोग्राम लाजवाब है में नेचुरल ब्यूटी क्रीम असा पान इस्तेमाल कयो प्या दोस्तन के बुधाई प्या असा ने कुछ दोस्तन तवा जो प्रोग्राम बुधंदा नारे खान गुलाम अली चनू साहब
0: चलो अदा तांजी मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थे चले सो एकड़ो ही वॉइस नोट अचो बदो छापा चवन
3: बाबर भा मां गुलाम रसूल मरी मीरपुर खास काठड़ी का तो गाया हेमी बीटी क्रीम जबरदस्त क्रीम आ चेहरे के सोनो प्यारो खूबसूरत बनाए तो मु पेरे ब डबी वरती पर 15 दिन मुके न मिलियो पर पोई भी चेहरे में सागी रौनक हुई 15 दिन में भी चेहरे में सागी रौनक हुई उन का पो सुमर जे दी मु ब डबी टे डबी भी वरती है वो मोड पियो है ना जबरदस्त क्रीम आ मानो मुंह के चेहरे के सोनो बनाए तो हथन के भी सोनो बनाए तो जेकर मानो हथन के लगाए तो हथ भी तमाम सोना थी वेंदा मुझे दोस्त आन मुझे प्यारो दोस्त बेवफा इम्तियाज अली बंगलानी राणो ग्रोही उनका पो मुझे प्यारो दोस्त बिलावल सोलंगी बिलावल अवांजो प्रोग्राम बुधे पियो बया जेके प्यारा दोस्त मुझा भायर प्रोग्राम बुधन पिया सभी के मुझे तरफा खोड़ सरा सलाम दुआ कबूल पौन खास कर परवेज बंगलानी जायद बंगलानी के मुझा सलाम दुआ
0: वालेकुम अस्सलाम भा तांच मेहरबानी प्रोग्राम में शामिल थिया अदा सो एकड़ो ही वॉइस नोट उदो ही छापा चवन
4: अस्सलाम वालेकुम बाबर भा गोठ वली मंदिर का शराज अली बंगलानी गला रहे हैं हेमे नेचर डैम जिलो बेहतरीन आसा लगा रहे हैं तवांडे सेल्फी मुकलिया दांग दबा मेड़ा खत्म करे थी बेहतरीन जो रिजल्ट असा कुछ दोस्तन काठड़ी का गुलाम रसूल मरी ले जवान अबशाम यूसी विक्या सांगी डिस्ट्रिक्ट लारकाने का अशरफ अली मिराली तनवीर अली मिराली इम्तियाज अली बंगलानी के सलाम हुजन बिलाव मोहम्मद बिलावल बंगलानी के सलाम हुजन अस्सलाम वालेकुम या अली मदद
0: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद तो दोस्तों बिल्कुल हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारन जो पैगाम भी जका है मा वक्तन फवक्तन मा ने पहुंचा इस्तेमाल रूटीन लाइफ में शामिल कर मौसम के बदलन के असरात पवन था स्किन महफूज रही डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम हमारे शहर जी शाही बाजार में तवांगे आसानी से मिली सके थी एकड़ो ही वॉइस नोट पोए 8881 वारा मैसेजेस
5: अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद तलास रोरी में बुलाए तो बाबा भाई चाल खुश है बखेर जी तवा जो प्रोग्राम दादो बेहतरीन दो दुआ असाय में ब्यूटी क्रीम आसान दा आयो तकरीबन हफ्तो खन थी तमाम बेहतरीन रिजल्ट आ वाकई में ब्यूटी क्रीम ढी भली है ब्यूटी भी कहती है इंसान के असी बुधन तारे में इलाई शुक्रिया
0: शुक्रिया पैगाम में शामिल थे सो सलाम अदा में प्यारी आर जे सिदरा की दोस्त इरम हूँ और आपके घर में मंगनी है उन्होंने भी तुझे घर में शादी में तुझे उन्होंने भी सहरो हलाया वाला है बुध हलाए को सो आई विल ट्राई फॉर प्लेइंग द सेरा ऑफ मुमताज मोलाई जो फरमाइश कई है तुझी मेहरबानी सो एच ममनून सर सबको सलाम वालेकुम असलम ममनून भाई गोठ शादी का जिसकानी लग मीरपुर खास का गुलाब अली जिसकानी मोहम्मद हाशिम जिसकानी एंड शमन अली लाशारी बाबर भा हेमे ब्यूटी क्रीम मीरपुर खास में किथे मिलंदी एसएमएस शामिल करियो थैंक यू अदा मीरपुर खास में शाही बाजार हलिया वनो उते तवा के भी मशहूर दुकानदार खा नालो वठी खरीद कयो उने के चो ता सांगे हेमे ब्यूटी क्रीम खपे ठीक आ हेमे छाकाणते हेमे हेमे आए ओके सो जी इन खा अलावा असा सा गडा ही शो नाई से आई एम तैयबा आपका शो बहुत शौक से सुनती हूँ सॉन्ग सुना दें रऊफ मक्सी का कोई भी ओके थैंक्स बाबर भाई तैयबा आपका बहुत शुक्रिया और जब फरमाइशी फॉर्मेट हो फिर आप फरमाइश किया करें तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अदरवाइज फरमाइश करने का पास हो कंदा ठीक है तो दोस्तों बिल्कुल प्रोग्राम में सेगमेंट आए सॉन्ग सुनियाण मां म्यूजिक प्ले किया वहां पे एक बेरो बीयर तो सुनियाण ने बुधायो तो या केड़े गाने जी म्यूजिक का सब बुधो गौर सा आई सुनियाणो तो बाबा ही केड़े गाने जी म्यूजिक अच्छो बला देता अनिया दिन के भी न सुनियाती है म्यूजिक के

हाँ नरम चमक ऐं साफ जल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियन तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम

0: पोइ तव्हांजो लाइव कॉल्स हूंदव सिर्फ़ पोइ नो वॉइस नोट ठीकु आहे ऐं पर सेल्फी तव्हांजो हुजनि ई हुजनि हीअ तमामु प्यारी हथ में हेमे ब्यूटी क्रीम आहे इन्हनि केरु आहे मोहम्मद अली महर जहानपुर शरीफ़ मां बात कर रहा हूं आप कैसे हैं मैं बिल्कुल ठीक हूं आप कैसे हैं भाई और महर साहब आपकी ये हेमे ब्यूटी क्रीम की जो सेल्फी आपने भेजी ना अपने हाथ की आपका हाथ भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपने अपना वॉइस नोट नहीं सेंड किया चले इट्स ओके आपकी महिरबानी ऐं दोस्तों बिल्कुलु हिकिड़ो ॿियो मां शामिल कंदुसि मैसेज अच्छा नंबर अथव असांजो 03-000-11-3488 तव्हां हिन नंबर ते असांखे व्हाट्सएप ते ज्वाइन करे सघो था हिकिड़ो ही वॉइस नोट
1: अस्सलामुअलैकुम मां ॻोठा जी अली मुराद ख़ासि किले खां आसिफ अली ख़ासि किले थो ॻाल्हायां तव्हांजो प्रोग्राम ज़बरदस्त आहे तव्हांजी हेमे ब्यूटी क्रीम ज़बरदस्त आहे तव्हांजे प्रोग्राम में आसिफ ख़ासि किले इंजॉय थो करे ऐं मूंखे अमन मुगल जो इहो गानो ॿुधायो अच पखीड़ा अच मुंहिंजे सद ते अच लख थोरा थींदा भाउ जा ऐं हर जा हेमे हेमे लॻी पई आहे ऐं मुंहिंजा कुझु भाइर आहिनि आशिक हुसैन ख़ासि किले मोहम्मद अशरफ ख़ासि किले फिदा हुसैन ख़ासि किले
0: ओके दा हींअर जो मां जेका अहमद मुगल प्ले कयो तव्हां न ॿुधियो छा अच्छा हिकिड़ो ही वॉइस नोट पाए बाबा अथव पोइ बाबा गानो अथव ठीकु आहे ॿुधो
2: अस्सलाम वालेकुम गोट फतेह खान सियाल खां बकरार अब्दुल हकीम सियाल वेरी नाइस हेमे नेचुरल ब्यूटी क्रीम वेरी नाइस शो हेमे नेचुरल ब्यूटी क्रीम हर हंधि दस्तियाब आहे 340 रुपए जी मिले थी असांखे सॉन्ग ॿुधायो मुनवर मुलाए जो मज कचहरी में असां तव्हांजो प्रोग्राम ॿुधूं था पिया वी आई पी प्रोग्राम हले थो पियो असां सां गॾु आहिनि मोहम्मद यासीन सियाल नज़ीर अमन सियाल नंढड़ी तबसुम सियाल
0: चलो अदा तव्हांजी महिरबानी तमामु प्यारो फीडबैक तव्हां ॾिनो ऐं तव्हांजी यार सेल्फी छो न आई आहे भला ख़ैर त आहे सेल्फी मोकिलण में तव्हांखे जेका त कहिड़ी तकलीफ़ थी थिए ॿुधायो अच्छा हीउ गानो आहे तव्हां सभिनि जे लाइ प्ले कयो आहे गानो ॿुधो इंतज़ार कयो मूंसां गॾु हेमे ब्यूटी शो में 8 ताईं हिन गाने खे बाद में जेको आहे न मां ईंदुसि त तव्हांजो जस्ट लाइव कॉल्स ऐं 888-11 मैसेजिस हूंदव ठीकु आहे

0: चलो गुड डे साईं, तव्हांजी महिरबानी। अच्छा मां म्यूज़िक प्ले कई आहे, बंगलाणी साहिब कहिड़े गाने जी आहे? यार ॾाढी सवली आहे। बहरहाल ॿुधायो त तव्हांजे लाइ जेको आहे मां जेको आहे अच्छा कहिड़ो पैगाम ॾियणु चाहींदो असांजे सामाइन खे या दोस्तनि खे सलाम ॾियणु चाहींदो?
1: गर्मी घटि आहे, चेहरे खे लॻाईंदा, चेहरो वीआईपी थींदो। इहो मुंहिंजो रिक्वेस्ट आहे, गुज़ारिश कंदी आहे सभिनि खे, तव्हां वञी वठो। मुंहिंजा कुझु दोस्त दोस्तनि खे
0: जी जी शामिल कयो। चलो वालेकुम अस्सलाम अदा, तव्हांजी वॾी महिरबानी प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। त दोस्तो बिल्कुलु असांजा तमामु घणा प्यारा लिसनर्स आहिनि जेके प्रोग्राम में जॉइन कंदा आहिनि, मूंखे ॾाढी ख़ुशी थींदी आहे। ऐं इन्हनि जी तरफ़ां जेको फीडबैक हूंदो आहे न, हेमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कंदड़ आहिनि, त जेको फीडबैक ॾींदा आहिनि न, मुंहिंजी ख़्वाहिश आहे इहा नंढड़ी, त इहो तव्हां जेको आहे न फीडबैक मां तमामु फ़ाइदो वधि खां वधि हासिलु कयो। ठीकु आहे, सो लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अदा केरु था ॻाल्हायो भाउ? लाशारी साहब, नालो बीहर ॿुधायो। शमन अमन अमन, ठीकु आहे। अदा इहो ॿुधायो त जेका म्यूज़िक प्ले कई आहे कहिड़े गाने जी
1: आहे?
0: छा आहिनि इहो? न साईं, ज़ामिन अली कोन्हे। हलो का ॻाल्हि कोन्हे, मां जेको आहे त हींअर जेको आख़िर में प्ले कंदोमांव ॿुधजो। ऐं अॼु जेको आहे तक़रीबन कंहिं बि सही जवाबु न ॾिनो आहे स्टिल, ऐं मां ॾिसां पियो त केरु सही जवाबु ॾिए पियो या न। सो का ॻाल्हि कोन्हे, अगरि तव्हां सही जवाबु न बि ॾियो पिया, सो मां हींअर जेको आहे त लाइव कॉल जी तरफ़ हलंदुसि ऐं ॾिसूं था लाइन ते गॾु केरु मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। अलाह जो शुक्र आहे। अदा तव्हां पंहिंजो ॿुधायो। पिताफ़ी साहब, छा हाल आहे? ख़ैर
1: आहे।
0: आमीन अदा, आमीन। पिताफ़ी साहब म्यूज़िक प्ले कयो आहे कहिड़े गाने जो आहे?
1: असांखे सम्झ नथी अचे,
0: सफ़ा सम्झ में नथी अचे। भला हेमे ब्यूटी क्रीम सम्झ में आई आहे? पक हेमे हेमे
1: आमे,
0: ॿियो कुझु त न आहे? हेमे हेमे
1: आहे।
0: ठीकु आहे, महिरबानी साईं, शामिल थिया तव्हां। जी जी शामिल करे वठो।
1: अब्दुल लतीफ़ जो
0: चलो महिरबानी अदा। त दोस्तो अञा ताईं कंहिं बि सही जवाबु न ॾिनो आहे, सो मूंखे लॻे थो मां इहो गानो प्ले कंदुसि तव्हांजे लाइ, पोइ तव्हां चवंदो यार इहो गानो असांखे अचे पियो, ॾिठो असां न करे सघियासीं, असां शामिल न थी सघियासीं, असां जमान असां न ॿुधाए सघियासीं। इट्स ओके। अच्छा हिकिड़ो ही वॉइस नोट मुंहिंजी दिलि न पई अचे त मां हिनखे जेको आहे चए इग्नोर कयां, छाकाणि त हिन हेमे ब्यूटी क्रीम जी सेल्फी बि मोकिली आहे। छा पिया चवनि ॿुधो।
2: असांजो चाचो बि यूज़ कंदो आहे, मुंहिंजो मलोटा उहो बि यूज़ कंदो आहे, मोहम्मद अली, मंजूर अहमन, ऐं मां पाण यूज़ कंदो आहियां, मुंहिंजो नालो अयाज़ महर आहे।
0: ओके अदा, अयाज़, तव्हांजी वॾी महिरबानी। त दोस्तो बिल्कुलु अव्हां ॿुधियो त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेके इस्तेमालु कंदड़ आहिनि उन्हनि जो छा चवणो। त दोस्तो हिकु दफ़ा ॿीहर मां तव्हांखे हिननि जो पैगाम ॿुधायूं वञा त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम वारनि दावा कई आहे त हेमे ब्यूटी क्रीम में SPF 30, वाइटामिन सी, ग्लूटाथायोन, कॉजिक एसिड ऐं ॿिया केतिरा ई इनग्रीडियंट्स शामिल आहिनि जेके तव्हांजे चेहरे जी स्किन खे बिल्कुलु परफेक्ट नरम मुलायम तरोताज़ा रखनि पिया, त तव्हां हुनजो फ़ाइदो हासिलु करे सघो था। विदइन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे थो। जेकॾहिं अव्हांजे शहर में न मिले त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करण में बिल्कुलु बि कंजूसी न कयो, धड़ाधड़ कॉल कयोन त जीअं तव्हांजे शहर में ही इलाइक़े में ॻोठ में वेझे स्टोर ते अवेलेबल कराइनि। सो नंबर्स आहिनि 0336713 407. IBO number ahe 0313 36 222 65. The music yo jeko wo maple kewai ai yo gaano jeko a un cha bol aine. Acha singer ai yo Iqrar Waheed Ali ai bol aine je roz rasne ta meena milanda hai. Budo enjoy kayo ai agle program time pe mezban Babar Sheikh ke due ijazat sadai gad ala hafiz ai zindagi ba khair.

0: नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धब्बा निशानात खत्म करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम इसमें शामिल है एसपीएफ 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ़ दे कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे और विटामिन सी ग्लूटाथायोन और आर्बुटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम हर दिन हो एक नया ग्लो एक नया कॉन्फिडेंस पिंक डायमंड ग्लो बाय हेमी नेचुरल्स

0: छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो बहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: हाणे हैरत अंगेज़ ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो। अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरनि मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरार होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमागी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरन। वधीक मशोरे ऐं राब जे लाइ 0327-99-84-763।

0: अल्फाज़ जो सजो अल्फाज है ना वो प्रॉपर न पे अचे जो मतलब आ जबान से थोतर पेशेंट की जबान से थोतर सही थी पाने सही थी वो बो केस मत जो तलवो आ न उन्हें जो मसलो बार नथा गल इन का अलावा दिमाग में कमजोरी जो थी वन उन्हें करे बार गलाए भी कौन थो बार हले भी कौन थो बार सुधरे भी कौन थो बार रोइंद भी जाम है मतलब के केस आहिन तमा परेशान न थियो असा जो होम्योपैथिक वाला डॉक्टर्स हूँ ना अद चरिया थी वा फड़ी फड़ी दिसो ना हाँ मुख्य सिर्फ कन बुधे को गलाए को उन गलाने के केतरी बीमारी कटियों ये अस पढ़ाए पढ़ाए अद चिथो कर अस डॉक्टर के लेक्चर इन कर पर यहाँ शुक्र है तो उन हर गाल एतरे तकरीबन असरी गाल खोले खोले समझाया तो अज में एफ एम से वेठो हाँ तो सिर्फ एक गाल बुधी उन अस गो गा बी गाल पा मिलाए अं जो मर्ज में खोले अं सामू रखा पो यह उस्ताद की मेहरबानी है
1: जी हाँ अवं बुध पी सकर नवाब शाह एफ एम 90.8 के लाइव स्टूडियो में प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक साण पेश कर पे वे अस अवं सा गड हूँ पूरी 9 वगे ती अ डॉक्टर साहब का सवाल पुछी सको मालूमत वी सको डॉक्टर साहब का जान वी सको बीमार के हवाले से कड़े भी किस्म जो सवाल होवा डॉक्टर साहब का पुछी सको इंशाल्लाह डॉक्टर साहब अवे लाजमी जवाब दींदा अगर जवाब दियण जड़ो हों छो जो ये होम्योपैथिक सेहत जो राज होम्योपैथिक साण जो प्रोग्राम जो है अस अवं फैमिली के लिए प्रोग्राम है फैमिली में बुध वो है तो उनमें कुछ गाल अस एफ एम से लाइव ना कर सकूँ उन जो उन शवा भी ख्याल कंदा कर डॉक्टर साहब का सवाल पुछी सको मालूम वी सो अस गड पूरे 9 वगे ती आ जी डॉक्टर साहब
0: बिल्कुल सही असि कोशिश है तो अलहमदुल्ला अगर 4 साल जो एफ एम से टाइम दिनो है तो उनमें तकरीबन मोट पेशेंट जो इंदा उन्हें से ही असं समझी वादा तो असो प्रोग्राम लेडीज घर में जो हूँ फैमिली प्रोग्राम थो तो वह बुधन पाया या आम मान होटल वे बुधन पाया फर्क है तो उन फर्क से ये तो पैदा थे तो पेशेंट जी मेल इंदा समझी वादा तो वो प्याण बुधाइन तो असा अवजो रात प्रोग्राम बुध समझी वाऊँ तो हाँ फैमिली प्रोग्राम अस उन तरीके से इनके हलो छो तो बीमारी में अस जल अस कॉलेज में वादा या यूनिवर्सिटी वादा पढ़ने के हिसाब का तो उन जगह से अस न को मर्द आयो न को जो लेडीज आ वह लेडीज आ असाज सामू बी जो नजरियो है अस उतने वन ती ये नजरियो खत्म थी वो तो वह औरत मर्द आ नजरों खत्म थी वो उनमें कुछ शान डॉक्टरी में कुछ शूं लेडीज़ वाली मर्दन के पढ़ाई वेंदी मर्दन वाली शूं लेडीज़ के जरूर पढ़ाई वजह है उनकी वजह है तो सुबाने अवं घर में को अड़ो केस थी वे तो अवं को डॉक्टर चवंदा तो उस डॉक्टर ने बुधा ना ये थो तो उनके खबर ही को पढ़ो ही को इन कर पढ़ाई वेंदन तो उनमें भी मेन मेन जो शूं लेडीज़ वाला प्रॉब्लम थन्दा उन्होंने बारे में समझाया वो बार है तो उन बारे में समझाया वो सुबे तव क्लिनिक वेठा हो प्रैक्टिस करो पाया तो उन में का उम्मीदवारी औरत अची वे तो उनके तक मेडिसन कें दिणी है तो इन कर जगह से यह मामला अस खत्म थी वादा अस नजरियो यो खत्म कर डॉक्टर्स जो हूँ पैरी गाल में यह शत्म जो भी वेंदा वह ये सोचे न वेंदा तो लेडीज वेठी है न वो तो यह शे को शे कह तो आखिरी बेंच से वेठा हों कहीं पढ़ाई ही को उनमें यो शूँ जरूर है तो इन डॉक्टरी में जरूर है तो अस भी कोशिश रही है तो प्रोग्राम में भी अस अड़ा वर्ड्स इस्तेमाल कह फैमिली के हिसाब से सूटेबल होजन सवाल अस अड़ा किस्म जहा मैसेज से इंदा रहा जो अस एफ एम से जवाब ना दूँ तो उन्होंने अस रिप्लाई कर चुना त्लिनिक अचो क्लिनिक असा सा गल इन मामले के बारे में
1: डॉक्टर साहब कॉल वा असलामकुम अदा असलामकुम साई केर गल किथा का
2: साईं आउं रोशन अली ॻाल्हायां थो ज़िलो नवाबशाह खां
1: डॉक्टर साहब सां ॻाल्हायो
0: साईं अस्सलाम वालेकुम
2: साईं वालेकुम सलाम
0: साईं मुंहिंजे लाइ कहिड़ो सवाल आहे अवांजो
2: साईं असांजो वर्ज़ आहे मुंहिंजी घरवारी खे सूरु आहे चेल में रोज़ु छॾे सही कोन थो केॾी महिल कुख में कंहिं महिल चेल में सूरु थिए थी निंड माते में बि सूरु दाऊं जे वेह जी कमकार करे चल दाऊं जे करे छॾे सही कोन थो
0: इन सूर खे इन तकलीफ़ खे घणो टाइम थियो आहे
2: केॾी महिल 2 साल खनि थी विया छॾे सही कोन थो
0: 2 साल वर्सो थी वियो
2: जी इन जे करे
0: अच्छा इन का अलावा बी का तकलीफ
2: बी माना गर्माई थी हाँ सही गर्माई

0: तो दाना सुबह तक
1: दाना
0: जिसम से आगे।
1: अच्छा
0: मैदे मैदे आ जगह से को दाना
1: दाना तो मैदे जी का तकलीफ तक ने
0: ना मैदे तक से गर्मा शाला चावन जे करना दाना निकालना शादी करे।
1: चलो ठीक है अब एफएम दो मैं एफएम दवा के समझाएं तो ऐसे दिसो जेल में सूर थन जी एकड़ी वजह कोने का उन में मुख्तलिफ शेऊ आहिन हने अवां जी जेका घरवारी आए उन सा केड़े किस्म जो मसलो आ ओ आद सामू दिसो आचर आ फ्री चेकअप वाले डी अवां वठी इंदो मैं चेकअप से समझ में इंदो तो असल गाल आ च मैं कुछ कुछ शेऊ अवां सामू रखा तो जेका जेसा अवां कुछ शेऊ समझी सको था तो जेल में सभी का हेठी हड्डो हों मन कंडो जो सभी का लास्ट लास्ट जो आखिरी हिस्सों हों टेल बोन चवन जी टेल जो मतलब वह पुछ तो वह आखिरी जो होंगी हड्डो उन टेल बोन चवंदा जी मल उन में धक् लगे तो वह तमाम घो दुख इलाज आपरेशन भी तमाम दुख कोशिश कर अला कर कें कि यह सूर न थे बाकी जेल है जेल में सूर थन्दा माते जी करे पर वो थो आर पार सामू का वही पे पास सागी जगह से सूर थे तो यह है माधे के कर सूर थे पो बाकी जेल के विच में सूर है तो यह है ना कंडे जो कंडे में का तकलीफ है उन्हें जे कर सूर थे पो जे पासन में बिन्न पास में साजे पास जेल में तो यह गुर्दे के कर तकलीफ मांस के कर तकलीफ सूर जेल का वी हेठ पैर ती अचे पो या रगन जो सूर इर्क के सूर की ती मन कंडीशन थी वी इर्क कान्ने का पर कंडीशन उ सही तो यह मुख्तलिफ सूर आन। अच्छा जेल में सूर एक बी बीमारी में भी है तो जनाना बीमारियों तकलीफों उन्हें में भी सूर थो हाँ एतरा सूर आन सही पर उनमें अवं लेडीज से अवं घरवारी उन कड़े किस्म के सूर आ यह सुबह ही चेकअप का पो ही असा समझी सकूँ था उनको इलाज थो इनशाला जरूर कदास अवरी तकलीफ आ अला कद यह जरूर खत्म थी पवी कोशिश कर उनके गर्म शरल शिर्च मसाला और बादी वाली जी शूं उ न दियो खीर जो इस्तेमाल जरूर करा उन मिख वी तो हड जो सूर है तो असा इलाज कर आसानी थी घड़ो वेह इजाजत को घड़ो हलण की इजाजत कान्ने का इन सा पेशेंट जो हड आन उन वजन न तो पे तो जैसा वो तकलीफ दा न कंदा असम प्रोग्राम में अवां भी शामिल थी सको था प्रोग्राम में बाकी टाइम बचो है थोड़ो तो जैमें अवां के का सवाल पूछना हो का तकलीफ के बारे में मालूम वी हो को इलाज कराया पे परेशान थी आयो का फायदो न प्रोड्यूसन में अचे तो चेकअप कराए सोस था चेकअप में भी को नुकसान कोने को चेकअप यहाँ तो एज ए मशवरो मशवरो वन सुनत है उनमें को हर्ज नुकसान का विषय का नुकसान सिर्फ यो है तो अवं अचो पे तो यह पेट्रोल दया थे यही नुकसान है बाकी जो इलाज अस मौजूद है तो अस जरूर कदासूँ जो अस कान्ने का को बीमारी अड़ी है तो जिनो डॉक्टर को स्पेशलिस्ट हूँ जो MBBS में चाहें तो स्पेशलिस्ट आन बार अलग माइन जो अलग थन्दा जिगर मादे जो अलग शुगर जो अलग मतलब दिमाग जो अलग दिल जो अलग तो अड़े हिसाब से होम्योपैथिक में यह सिस्टम ना है होम्योपैथिक में जो आम जनरल बीमारी जैसे तीन ऑपरेशन वाला केस न होजन टांक लगन वाला केस न होजन यह सब होम्योपैथिक में शामिल आन टांक लगन वाला केस होम्योपैथिक में न इंदा ऑपरेशन वाला केस होम्योपैथिक में न इंदा यह इन करे असा अड़े केसन में असा अवॉइड कंदा आयो बाकी जेका केस आ बीमारी है जो दवा वसीले से हल थी सके थी वह सब मन नंढी में नंढी वडे में वडी दवा वसीले से हल थे वाली है तो उनको इलाज होम्योपैथिक में मौजूद है इन कर चवंदा जी मल असा मेडिसन्स वह एतरी एडवांस है तो अवं के ऑपरेशन ती वजन का वापस रिवर्स गियर हणाए छी उन वजह छा तो उनमें सिम्पटम्स अड़ा होम्योपैथिक में तो सिम्पटम जी मल मैच थी था वन दवा जहाँ पेशेंट जहाँ तो समझो तवे त जित ऑपरेशन कराना तो विसारे छो ऑपरेशन कर सिम्पटम मैच थी वह अलामतूँ जो पेशेंट जन जो दवाओं की अलामतूँ बई मिली वह भले वह डॉक्टर अपॉइंटमेंट भी तक दिनल हुए अपॉइंटमेंट भी तुम खत्म थी एतरी असान एडवांस मेडिसन्स इन कर चवंदा तो होम्योपैथिक की तरफ जरूर अचो।
2: डॉक्टर साहब अवां जो पैगाम चाहूं दो असन जे सामाइन जिला
1: सामाइन जिला पैगाम असा अजो का प्रोग्राम सेहत जो राज होम्योपैथिक सा उने में असन कोशिश रही अवां जी कॉल भी रिसीव कई आई लाइव अवां सा गुफ्तगू भी थी असन जी अवां जे बारे में बीमारी जे बारे में मालूमात भी असा कई ते उने में प्रोग्राम रखन जो आई प्रोग्राम करन में अज मजो आयो उन में अज के प्रोग्राम में असान जो जेको पैगाम हुंदो अवां जे ला वो यही हुंदो अवां पांजी सेहत जो ख्याल रखो ऐसो सेहत आए तो सब कुछ आए सेहत नाहे त का शइ कोन्हे को मिट माइट अज़ीज़ सभी न हूंदा आहिनि सिर्फ़ु फॉर्मेलिटी हूंदी आहे कुझु कुझु घरानि आहिनि कुझु कुझु घर अहिड़ा आहिनि त जंहिंमें फॉर्मेलिटी नाहे पर तक़रीबन इहा शइ आहे छो त इन में अवां होम्योपैथिक जो इलाज कराईंदव होम्योपैथिक में बीमारी ख़त्म करण जी जेका बि तकलीफ़ आहे अतिरिक्त खां ख़ासि दवाऊं असां वटि मौजूदु आहिनि त जेका अव्हां जी बीमारियूं जेका अव्हां जी तकलीफ़ूं जेका अव्हां जा मर्ज़ अलहमदिल्ला होम्योपैथिक जे इलाज सां होम्योपैथिक जी दवाउनि सां ज़रूरु ख़तमु थी सघनि था असांजी कोशिशि रहंदी आहे त होम्योपैथिक दवाउनि सां अहिड़े अहिड़े बीमारियुनि जो इलाजु मौजूदु आहे त जंहिंमें असां कोशिश कंदा आहियूं त पेशेंट खे दवाऊं सुठियूं मिलनि अॼु बि मूं वटि पेशेंट आया हुआ सठ मेल खां पेशेंट आया हुआ औरत हुई उनखे कंहिं ड्रिप लॻाई हुई डॉक्टर उन ड्रिप लॻाइण खां पोइ हुनखे अधरंग थी वियो बेहोश थी वई ड्रिप पाण बंदि थी वई अधरंग थी वियो तक़रीबन हुनखे 6 महीना साल थी चुको अॼु उहो केस मुंहिंजी क्लिनिक ते आयो हुओ त उन में छा थियो त मूं वटि हिकिड़ी दवा मौजूदु न हुई हाणे मां मटाए करे ॿी का दवा ॾेई सघां थो पर मूं चयो न जेॾी महिल इन दवा जी ज़रूरत आहे त इहा ई ॾियणी आहे त मूं पर्चे ते मूं लिखी पेशेंट खे चवंदो बाबा इहा हिकिड़ी अव्हां जे लाइ ज़हमत मां ॾियां पियो पर महिरबानी कयो इहा शइ वठी छॾिजो नवाबशाह 60 मील खां वेंदव त नवाबशाह मां ई वेंदव त इहा शइ वठी छॾिजो जे नथा वञो त घोठु वञी सुभाणे को अची इन जॻह तां वठी इहो इस्तेमालु कराइजो मां पंहिंजी क्लिनिक ते मटाए करे ॿी बि ॾेई सघां थो पर पेशेंट खे ज़रूरत इन शइ जी आहे त इहा ई वठिजो इनशाला इहो खाराईंदो हाणे पाण तव्हांखे कंडीशन में तबियत में बहितरी महसूसु थियणु शुरू थी वेंदी ॿुधाइण जो मक़सदु त जंहिं शइ जी दवा जी ज़रूरत आहे असां उहे ॾींदा आहियूं हर बुर दवाऊं मटाइण करे ॿी का दवा असांजी आदत कान्हे का त इन करे अव्हां होम्योपैथिक इलाजु कराईंदव तव्हांखे दवाऊं बि सही मिलंदियूं इनशाला ऐं दवा सही हूंदी त पाण ई बीमारी बि ख़तमु थींदी और बीमारी ख़तमु थींदी अव्हां ख़ुशि थींदव असांखे ॿियो छा खपे असांखे इहो ई ख़ुशी आहे त असां वटि जेको आयो दुख में आयो अॼु उहो खिले पियो इन खां वधियो असां छा कयूं बाक़ी जेको आहे अलाह जो शुक्र आहे त एतिरा बीमारियूं बीमार आहिनि एतिरा बीमारियुनि जो असां इलाजु करे चुका आहियूं त अॼु बि मूंखे घर वारा कॉल करे चवंदा आहिनि त यार इन जो मसलो ॻोल्हे ॾे त मां फ़ोननि ते ॻाल्हि ॿोल कंदे कंदे उन जा पुराणा राज़ खोले वेंदो आहियां त इहा सभु छा आहे त FM ते वेही ॻाल्हाए पुराणा पुराणा मरीज़नि जा राज़ खोले वेंदा उहे चरिया थी वेंदा यार हा इहो त परे थियो हुओ मूंसां बीमारी निकिरी आई न पर तक़रीबन एतिरो ॻाल्हि हाणे थी चुको आहे सभिनि प्रोग्राम जो टाइम थिए पियो ख़तमु छो त सलीम साहिब खे कुझु ॻाल्हियूं अवां सां करणियूं आहिनि त उहो अॼु प्रोग्राम में अवां सां कंदा मूंखे हींअर टाइम ॾिनो आहे त थोरो मूंखे टाइम ॾिजो त मूं टाइम ॾियां थो सलीम साहिब खे त उहो तव्हां सां कचहरी कंदा मूंखे ॾियो इजाज़त अलाह निगेबा
2: जीअं समीन असां सां गॾु आहे सकरनि जा मशहूरु मारु सकरनि जा मशहूरु मारु होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत साहब डॉक्टर साहब माहिर अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछू जोड़न जो सूर मथे जो सूर मादे जी अल्सर मादे जलन तली जो वधण जिगर जा मर्ज़ शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फालिज खंग टीबी पथरी जो भी बगैर ऑपरेशन जे इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जे रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि तोड़े औरतनि में वज़न जो न वधण इन्हनि सभिनीनि बीमारियुनि जो कामयाबु इलाजु कयो वञे थो डॉक्टर साहब रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं सकरन होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवाणी किरिया मेरापुर रोड नर्ज़ बाईपास सकरन में मरीज़नि जो इलाजु कंदा आहिनि जुमो मोकल कंदा आहिनि हर छंछरु आचर ते बग़ैर फीस जे चेकअप कयो वेंदो आहे नोट सिर्फ़ु दवा स्टोर तां वठणी पवंदी आहे डॉक्टर साहब जो मालूमाती नंबर 02-27-84-7-8-9-8-4-7-6-3 जीअं समन इहो डॉक्टर साहब जो मोबाइल नंबर आहे हिन ते अगरि कॉल करे डॉक्टर साहब खां लाइव सवाल बि पुछी सघंदा आहियो क्लिनिक ते बि डॉक्टर साहब वटि इहो ई नंबर मौजूदु हूंदो आहे समन जी ख़ुशि त जहान ख़ुशि ऐं वक़्त जो अहसासु प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते जीअं समन प्रोग्राम सिहत जी ॻाल्हि या सिहत जो राज़ होम्योपैथिक सां जो बि वक़्तु पहुचे थो पंहिंजी पुॼाणी ते जॾहिं बि दुआ लाइ खणो पंहिंजे मेज़बान सलीम अहमद सरगाणी खे दुआउनि में ज़रूरु यादि रखिजो ज़िंदगी अगरि साथ ॾिनो त ॿिए प्रोग्राम में हूंदुसि अवां सां गॾु तेसी मूंखे ॾींदा इजाज़त सदाई गड अलावा ही अलग पान।

0: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
1: हाणे हैरत अंगेज ऐं जदीद मशीन ज़रिए पंहिंजो मुकमल चेकअप करायो ऐं होम्योपैथिक इलाज सां कुदरती शिफ़ा हासिल करियो। सिहत ऐं तंदुरुस्तीअ जी नई राह ते गामज़न थियो त पोइ देर छो? अव्हां जे पंहिंजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ़ ख़ानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिज़िशियन माहिर अमराज मादो ऐं जिगर गुर्दे पिते जी पथरी ऐं सोज पुराणी खंघ ज़ुकाम दिल जी तकलीफ अध मथे जो सूर अखियुनि जी ख़ारिश जोड़न जो सूर बुखार ॿारनि जो देर सां हलण शुगर दिमाग़ी कमज़ोरी ख़ारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो मुकमल इलाज कयो वेंदो आहे। होमियो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोज़ानो सुबुह 9 वॻे खां शाम 5 वॻे ताईं बरोज़ जुमो मोकल आहे। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण। वधीक मशोरे ऐं राब्ते जे लाइ 0327-99-84-763।
2: पंहिंजो शहर पंहिंजो घर सकरण ऐं सकरण जो आवाज़
3: GFM 90.8।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज आवाज
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: It's 9:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे। जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अवां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: का हर चप्पा हर गोशा
6: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
5: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

रही हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंक की आवाज।

0: फ्री रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अल हबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
1: बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का।

0: क्या देख रहे हो?
1: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
2: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क, GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: तेरे साल तक कौम के मुबारक हूँ। ISPR मौजिक एयर चीफ मार्शल है, नेवल चीफ पारा भी कौम आई फौज के मुबारकबाद पेश कई वही मारका हक जी कामयाबी मां साबित थी वो पाकिस्तान असलायती दिफाई सलाहियत रखा मुल्क है। मारका हक जी कामयाबी कौमी एतमाद के मजबूत कर छो है। कौमी यकजहती एहतराम ए तशक्कुर से मल्हायो वेंदड़ ही दी पेशेवरानी महारत हिम्मत ए इतिहाद के पायदार जज्बे जो सबूत है। हथियारबंद फौज पाकिस्तान अवाम से गड कुलो कुल्हे में मिलाए बीठल है ए कौम से लाजवाब रिश्ते के निभाए रही है। पाकिस्तान अमन पसंद रियासत है पर हर जारियत जो भरपूर जवाब दियण भी जानू था। सदर आसिफ अली जरदारी पारा हक जी जंग में कामयाबी जो एक साल मुकम्मल थियण ते पाक फौज के भेटा पेश। सदर आसिफ अली जरदारी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर जी क्यादत के हक जी जंग में कामयाब ए मरकजी किरदार करार दिनों। पाक फजैया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू ए जवानन जी महारत जी भी वाखाण। सदर आसिफ अली जरदारी चो तो पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ ए पाक नेवी के जवानन ते भी फख्र है। गैर कानूनी तौर भारत के कब्जे हेठ वाला रहल कश्मीर जो मसलो टहराउन मुताबिक हल थियण घुर्जे। पाकिस्तान कश्मीरी अवाम के इखलाकी ए सिफारती हिमायत जारी रखंदो। अमरीका ईरान में इंदड़ हफ्ते इस्लामाबाद में बीहर गालू शुरू थे इम्कान। मामला तय न थे ते सदर ट्रंप की वरी ईरान के ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू करने की धमकी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट में चाहिए त अमरीका ईरान सारिसी कुरियन से गड़ी शुरूआती माहदे से कम कर रहा है जै तहत एक महीने ताई गाल फ्रेमवर्क तेजो। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी अज ईरान तरफा अमरीकी तजवीजन से जवाब मिलने लाय पुरउमीद। डोनाल्ड ट्रंप ईरान से मामला न थिया तबीहर प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस तरफ वही सकूं था। प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस में यू शयूं भी शामिल हूं। पैंजो कम करे रहा हूं कैंजी डेडलाइन ते को भी ध्यान ना है। ईरानी परदेही वजारत के तर्जुमान इस्माइल बकाई चाहिए ते तेहरान
0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाने वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए होजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: हाँ हैरत अंगेज ए जदीद मशीन जरिए पांजो मुकम्मल चेकअप करायो होम्योपैथिक इलाज से कुदरती शिफा हासिल करियो सेहत ए तंदुरुस्ती की नई राह ते गामजन थियो तपोए देर छो अवां जे पांजे शहर सकरण में मशहूर व मारूफ खानदानी तजुर्बेकार सीनियर लेक्चरर होम्योपैथिक डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत DHMS सिंध RHMP पाकिस्तान जनरल फिजिशियन माहिर अमराज मादो ए जिगर गुर्दे पिते की पथरी सोज पुरानी खंघ जुकाम दिल की तकलीफ अध मथे जो सूर अखिन की खारिश जोड़न जो सूर बुखार बारन जो देर सा हलन शुगर दिमागी कमजोरी खारिश नासूर खूनी वबादी बवासीर उन्हें सभी बीमारियों जो मुकम्मल इलाज किया वो है। होम्यो डॉक्टर हारिस जावेद राजपूत टाइम रोजानो सुबह 9 का शाम 5 तई बरोज जुम्मू मोकल है। एड्रेस सकरण होम्योपैथिक क्लिनिक शेरवानी कीरिया मेहरापुर रोड सकरण मशोरे जिला 0327 99 84 760 63।